नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 47 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा

यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का दो दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यूएसटीआर ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कारेकाल उत्तराखंड पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भारत केवल मानचित्र पर खींची हुई सीमाओं का नाम नहीं है, भारत उन करोड़ों लोगों की सामूहिक चेतना का नाम है जो अलग अलग होकर भी एक हैं। हमारे घरों में त्योहारों के रंग अलग हो सकते हैं, हमारी थाली में स्वाद अलग हो सकते हैं, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमारी धड़कनों की भाषा एक हो जाती है। यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।

हे मनुष्य, संसार के मोह माया में अधिक मत उलझ। हरि के भजन और भगवान के स्मरण को ही अपने जीवन का सच्चा आधार मान। कबीरदास जी यहाँ मनुष्य को मोह और माया की क्षण भंगुरता समझाते हैं। संसार में धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, संबंध, सब कुछ समय के साथ बदल जाने वाला है। हम इन्हें अपना स्थायी सहारा मानकर इनके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंततः इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। लेकिन प्रभु का नाम ही स्थायी सहारा है।

भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। हाँ, जिस परमात्मा के लिए यह कहा जाता है कि वह अनंत है, असीम है, अजन्मा है, अविनाशी है, उन्हीं भगवान को एक सच्चे भक्त का प्रेम बांध लेता है। इसलिए तो कहा गया है, भगत के बस में है भगवान। ये बात सुनने में जितनी सरल है, भीतर से उतनी ही गहरी है, क्योंकि यहाँ बस में होने का अर्थ भगवान पर अधिकार जमाना नहीं है। यहाँ बस में होने का अर्थ है प्रेम के सामने परमात्मा का स्वयं झुक जाना।

भक्ति की विराट परंपरा में दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को देखने की दो अद्भुत दृष्टियां हमें दी है, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास। सूरदास ने जब कृष्ण को देखा तो उन्हें वृंदावन की धूल में खेलता हुआ एक नन्हा बालक दिखाई दिया, माखन की मटकी के पीछे छिपता हुआ, माँ यशोदा से आंख बचाकर माखन चुराता हुआ। वहीं तुलसीदास ने श्री राम में देखा कर्तव्य का प्रकाश, सत्य की दृढ़ता, त्याग की ऊंचाई, करुणा की गहराई और मर्यादा की वह सीमा जिसके भीतर रहकर भी मनुष्य महानता की सर्वोच्च ऊंचाई को छू सकता है। एक और सुर के बाल कन्हाई है तो दूसरी और तुलसी के श्री राम।

कभी कभी जीवन में अंधेरा इसलिए नहीं आता है कि रास्ता समाप्त हो गया है, बल्कि इसलिए आता है कि किसी नई रोशनी के आने का समय हो गया है। बादल स्वयं अंधेरे दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं के भीतर वर्षा का प्रकाश छिपा होता है।

0: ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन। आलेख है किशोर श्रीवास का, वाचन पूजा ठाकुर का।
1: इस आपाधापी से भरी हुई दुनिया में जहां हर तरफ केवल शब्दों का कोलाहल है, यदि हम थोड़ी देर रुककर अपने चारों ओर देखें तो एक अजीब सी होड़ दिखाई देती है। हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहता है, अपनी बात को सही साबित करने के लिए आवाज ऊंची कर रहा है। हमने बोलने को ही अभिव्यक्ति की अंतिम सीमा मान लिया है, लेकिन इस निरंतर बहते हुए शब्दों के शोर में प्रश्न यह उठता है कि क्या हम वास्तव में एक दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं, या फिर हम केवल आवाजें पैदा कर रहे हैं बिना किसी गहरे जुड़ाव के। जब हम मौन के विचार में उतरते हैं तो समझ आता है कि मौन केवल शब्दों का होना ही नहीं होता, वह तो अपने आप में एक संपूर्ण और सबसे अर्थपूर्ण भाषा है। भारत के प्राचीन दर्शन को यदि गहराई से देखें तो वहां मौन को किसी आलस्य या लाचारी का प्रतीक नहीं, बल्कि परम विवेक का स्वरूप माना गया है। हमारे ग्रंथों में चाणक्य जी ने एक बहुत व्यवहारिक बात कही थी। उनका मानना था कि जिस व्यक्ति के पास ये समझ है कि कहां चुप रहना है, वह दुनिया के सबसे बड़े विवादों को बिना एक शब्द बोले टाल सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि अपनी वाणी में शक्ति तब आती है जब उसे मौन का आधार प्राप्त होता है। जैसे धनुष से तीर छोड़ने से पहले डोरी को खींचकर शांत होना पड़ता है, ठीक वैसे ही अर्थपूर्ण शब्द

0: खुलने से पहले मन को मौन की गहराई में जाना आवश्यक है। प्रकृति के सहज प्रवाह को देखें तो समझ आता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल और परिवर्तनकारी घटनाएं हमेशा मौन में घटित होती है। एक बीज जब मिट्टी के भीतर अंकुरित होता है तो वह शोर नहीं मचाता, वह अंधेरे में शांत रहकर खुद को बदलता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। सुबह जब सूर्य उदित होता है और धरती पर उजाला फैलाता है तो उसके पीछे कोई घोषणा नहीं होती। गड़गड़ाहट तो केवल बादलों की होती है जो पल भर में बरस कर छट जाते हैं, लेकिन प्रकृति को सींचने वाली ओस की बूंदे हमेशा नीरवता में ही गिरती है। जो चीज सचमुच गहरी और महान होती है उसे अपनी उपस्थिति साबित करने के लिए ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती। आधुनिक जीवन की त्रासदी यह है कि हमें चुप रहने को अकेलापन या उदासी समझ लिया है। जैसे ही कमरे में शांति होती है हम तुरंत टीवी चला लेते हैं या हाथ में फोन उठा लेते हैं, क्योंकि हम खुद के साथ शांत बैठने से घबराते हैं। हम अपनी ही सोच के आमने सामने होने से डरते हैं, लेकिन मौन वास्तव में आत्म साक्षात्कार का सबसे पवित्र द्वार है। जब भारी कोलाहल थमता है तभी भीतर का वह मौन बोलना शुरू करता है जिसे हम रोजमर्रा के शोर में दबा देते हैं। हमारी मानवीय संवेदनाओं और संबंधों में भी मौन की अपनी एक अद्भुत भूमिका है। कई बार जब कोई हमारा प्रियजन गहरे दुख में होता है तो हमारे सांत्वना के शब्द अक्सर छोटे और झूठे पड़ने लगते हैं। ऐसे क्षणों में केवल उनका हाथ थामकर उनके पास चुपचाप बैठ जाना शब्दों से कहीं अधिक सांत्वना बांधता है। वह मौन उपस्थिति यह संदेश देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शब्दों में अर्थ सीमित होते हैं, लेकिन मौन की कोई सीमा नहीं होती। वह सीधा हृदय से हृदय तक संवाद करता है। चाणक्य जी ने आचरण के शिल्प को समझाते हुए यह भी स्पष्ट किया था कि मूर्ख और विद्वान का अंतर उनके शांत रहने के विवेक से ही पता चलता है। उन्होंने कहा था कि अपरिपक्व विचार हमेशा आवाज करते हैं, जबकि गहरा ज्ञान हमेशा शांत और स्थिर होता है। जब कोई नागरिक सार्वजनिक जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र में शांत रहकर बिना किसी शिकायत या दिखावे के अपनी पूरी निष्ठा से काम करता है तो वह वास्तव में मौन रहकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा होता है। उसकी निष्ठा ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है। मौन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर कहीं ढूंढना पड़े। यह कोई ऐसी साधना नहीं जिसके लिए सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाना पड़े। ये तो हमारे दैनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच एक छोटा सा ठहराव है। जैसे दो सुरों के बीच सन्नाटा ही संगीत को जन्म देता है, वैसे ही शब्दों के बीच का मौन ही हमारे जीवन को मधुर और विचारशील बनाता है। सुबह की इस शांत बेला में जब रात का सन्नाटा धीरे धीरे छट रहा है और एक नया दिन हमारे सामने नई उम्मीदें लेकर खड़ा है, तब कुछ पलों के लिए अपने भीतर के इस मौन को महसूस करना बहुत मूल्यवान हो सकता है। यह आत्ममंथन हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारी दिनचर्या शब्दों और कामों से भरी हो, पर हमारे भीतर का मन हमेशा एक शांत और निर्मल झील की तरह स्थिर रहना चाहिए।
1: ये था चिंतन, आलेख था किशोर श्रीवास का और वाचन पूजा ठाकुर का। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज का विषय है ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल। वाचन है प्रेरणा पहारिका।
2: खेती की बात में आप सभी भाई बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम में आपका साथ में छे आपकी बहन प्रेरणा पहारे, तो स्वीकार करो हमारे राम राम। बैबनहोन, सर्दी का मौसम में पशुपालक न की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ी जाए, क्योंकि अपना कृषि व्यवसाय में पशुपालन मुख्य रूप से आवज न। हमारा कई किसान भाई बहन ऐसा भी छे जो कि पूर्ण रूप से पशुधन पर निर्भर छे। इना समय में मौसम पूर्वानुमान का देखी न पशु की देखरेख न उचित सुरक्षा की व्यवस्था जरूर सी करा। सबसे पहला आवास की व्यवस्था पर ध्यान देवा। ध्यान रखा कि अपना जो पशुबाड़ा छे, जो पशुशाला छे, ओका में ठंडी हवा सीधी नहीं आवा न रोशनदान से आने वाली जो ठंडी हवा छे उका रोकना का लेना। टाट बोरी या अरु भी कई सारा विकल्प बाजार में छे तो उको उपयोग करी सको। बैबनहोन, ठंड से बचाव का लेना रात्रि में पशु नका पास में पुआल या सूखी घास फर्श पर बिछावा न पशु नका दिन का घड़ी धूप में जरूर सी बांधा। ध्यान रखा कि फर्श गीली नहीं होए, नहीं तो पशु नख बुखार या सर्दी जुकाम या जोड़ों में दर्द जैसी समस्या अपना पशु नख हुई सकज। एक अलावा पशु नख मोटा कपड़ा टाट या बोरा सी ढकी ने रखा, उनका कपड़ा जैसा पेराई देवा, जेका सी ठंडी हवा का सीधा संपर्क सी अपना पशु बची सका। भाई बहन, इन्हा मौसम में खुर

0: का मुंह पका रोग होना की ज्यादा संभावना रहे तो ओको टीकाकरण जरूर सी कराड़ी लेवा। जेकासी सर्दी का मौसम में होना वाला रोग नसी हमारा जो पशु धन छे उनको सुरक्षा हुई सकन, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता छे उनका शरीर की वो बढ़ी सक। बेबनोन कृमि नाशक जैसी दवा भी अपना पशु नख जरूर सी देवा जेकासी मौसमी बीमारी नसी हमारा पशु जो छे वो बची सक। कदी पशु आहार कम करी दे, दूध अचानक से घटी जाए उनको न सांस लेने में भी दिक्कत हो या बुखार लगा तो तुरंत जो अपना पास का पशु चिकित्सक छे उनका से जरूर से संपर्क करा। बेबनोन सर्दी में पशु न का आहार को विशेष रूप से ध्यान रखा। ठंड का मौसम में उनको भोजन में बदलाव जरूरी छे। दाना खली न चोकर की मात्रा आहार में सामान्य से अधिक रखा न पोषक तत्व से युक्त खानो खिलावा। सरसों की खली न गुड़ देने से शरीर में गर्मी आवज जेका सी उनका जो शरीर की ऊर्जा छे वो ज्यादा हो। बेबनहुन हरो चारो न साफ गुनगुनो पानी उनका देवा जेका सी उनकी पाचन शक्ति जो छे वो बढ़ी सकन, दूध की गुणवत्ता भी एका सी बढ़ेगा। बेबनहुन अपना पशु नख पोषण से भरपूर न ऊर्जा युक्त आहार देवा। सरसों की खली गुड़ मेथी दाना बाजरा या अनुरूपी प्रकार का जो अनाज छे वो अपना पशु नख दई सको। बेबनून एक अलावा पशु नख प्रतिदिन नमक देवा ई उनका स्वास्थ्य का लेना जरूरी छे। केड़ा न केड़ी हो तो उनका प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच न गाय जो गाय और भैंस छे उनका 4 से 5 चम्मच नमक पानी में मिलाई न देवा। एकासी पशु नख की प्रजनन शक्ति को विकास होएगा। बेबनून एक अलावा पशुशाला में साफ सफाई को विशेष रूप से ध्यान रखा, नियमित साफ सफाई रखा। उनका बाड़ा में कीट मच्छर प्रतिरोधी जो दवाई न छे उनको छिड़काव भी कर सको जेकासी मच्छर माखी न का प्रकोप से हमारा पशुधन बची सकन, इनसे होने वाली जो बीमारी न छे उनका से भी हमारी पशुधन की रक्षा हो। बेबनून मच्छर न कीड़ा न का लेना देसी उपाय भी करी सको जैसा कि कंडा पर सूखा नीम न कपूर अजवाइन न लौंग मिलाई न पशुवाड़ा में धुओं भी करी सको जेका से मच्छर माखी न से हमारा जो पशु छे वो बची सकेगा। बेबनून आज का लेना इतरो छे तो आज्ञा दियो। राम राम।
1: ये थी खेती की बातें। इसमें आज आपने जाना सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। वाचन था प्रेरणा पहारे का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजा जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

ये था श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे ए हरिहरन, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। सुबह 8:30 भोपाल से रिले किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

सुंदरलाल मालवीय के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर। गुरमीत सिंह दंद की आवाज में सुगम संगीत प्रसारित करेंगे सुबह 9:15 पर और शाम 6:30।

प्रकार हैं। सुबह 11 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम, दिन में 12:30 बजे संग्रहालय से, 1 बजे आप सुन सकेंगे महिला कार्यक्रम। इसमें आज योजना क्रम में बताएंगे स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में, साथ ही सुनिएगा 1 साल में 14 किलो वजन कम करने की प्रेरक कहानी योग से फिटनेस तक। रूप लावण्य में बताया जाएगा उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की देखभाल कैसे करें।

0: दिन में 1 बजे जो महिला कार्यक्रम है वो हम स्टूडियो से ही प्रसारित करेंगे, फिर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे 1:30 पर लोकगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर 2:30 पर। शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम होगा 5 बजे, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 6 बजे से, 7:30 भोपाल से रिले करेंगे किसान वाणी, जन सेवा से देश सेवा यह विशेष कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे रात 8 बजे। ये था कार्यक्रम विवरण, अब सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा।

0: दर्शी नीतिभिः अथ कठिन परिश्रमेण च सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्ष पर्यन्तम् विकसित राष्ट्रस्य स्वप्नम् निश्चित रूपेण साकारयिष्यति। विकसित भारत संकल्प सभां संबोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयम् चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विक स्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञान विनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्सपटले @AIRNewsHindi अथ इंस्टाग्राम माध्यमे AIRNewsAlerts इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
0: वस्तु सेवा कर परिषदः सप्तपञ्चाशत्तमम् उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते। वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवाकर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय सम्बद्ध कर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति सम्बद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति। अस्य उद्देश्यम् अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति। वित्तमन्त्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तु सेवा कर व्यवस्थायां आगामि परिष्काराणां कृते पञ्च सूत्र सम्बद्ध योजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्म दिवसस्य अवसरात् सितम्बर मासस्य सप्तदश दिनांके गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तं प्रारब्धा सेवा संकल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवा यात्रायाः समापन समारोहं सम्बोधितवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशी पर्यन्तमियं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः पञ्चविंशति वर्षीयं सेवा संकल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार।

डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख

प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले संवाद में मध्यप्रदेश के क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश अवसरों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन टू वन बैठकें भी करेंगे। ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, के पीएम मित्रा पार्क और उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की संभावनाएं उद्योग प्रतिनिधियों के सामने रखी जाएंगी। जीएसटी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से किशोर कुमार की जन्मस्थली पुलिस ग्राउंड में होने वाले समारोह में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वीर यादव को अभिनय के लिए प्रदान किया जाएगा। 12 अक्टूबर को ये शाम मस्तानी गीत संगीत संध्या में स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं 13 अक्टूबर को समेश भोसले गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1000 पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सतना, रीवा, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आंधी और बारिश का माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में बारिश की संभावना है। प्रदेश से मानसून 3 अक्टूबर को विदा हो चुका है। इस बार में सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज हुई। चाइना प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बड़कुआ रोड पर आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। शिवपुरी जिले में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन आज 8 अक्टूबर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नर्मदापुरम स्थित एसएनजी स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय सेवा ज्योति संघ निकाली गई। वहीं जबलपुर में भी भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत कल 8 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली गई। मंडला 26 का समापन हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए पोस्टर पेंटिंग रंगोली और क्विज प्रतियोगिताएं कराई गयी। सतना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद और रामपुर बघेलान के सभी 1552 मतदान केंद्रों पर युवाओं के नाम जोड़ने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रुति, वायुसेना आज दुनिया की प्रमुख वायुसेनाओं में गिनी जाती है। हमारे पास अपनी स्वनिर्मित मिसाइलें हैं और यही हमारी वायुसेना को अचूक और अभेद बनाती हैं। लेकिन किसी भी संस्था की असली ताकत तकनीक में नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है उसके लोग। वे पायलट जो कठिन परिस्थितियों में उड़ान भरते हैं, वे तकनीकी विशेषज्ञ जो हर विमान को उड़ान के लिए तैयार रखते हैं, वो ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर और अधिकारी जो हर मिशन के पीछे अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। एक लड़ाकू विमान जब आसमान में गर्जना करता है तो उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत, प्रशिक्षण और अनुशासन होता है। वायुसेना दिवस इसलिए केवल एक सैन्य दिवस नहीं है, यह उन सभी लोगों को सलाम करने का अवसर है जो देश की सुरक्षा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए
1: श्रोताओं आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आकाश की ऊंचाइयों को छूने का हौसला हो तो सपनों को पंख और आंखों में रोशनी हो तो वही सपने रंगों में बदल जाते हैं। जी हां श्रोताओं, आज विश्व दृष्टि दिवस भी है। ये हमें याद दिलाता है कि रोज सुबह उठते ही आंखें खोलते जो सुंदर सा दृश्य हमें दिखता है, जहान हमें दिखता है, प्रकृति हमें दिखती है, उन आंखों की देखभाल के लिए हम क्या करते हैं। हमें लगता है ये है कि हमेशा ही ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमेशा ही हमारे पास आंखों की रोशनी ऐसी रहेगी। पर जरा सोचें, जिनके पास ये रोशनी नहीं है वो इस दुनिया को देख नहीं पाते हैं। और दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग सुरती को देखने से वंचित हैं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम के बाकी जो गीत हैं वो हम समर्पित कर रहे हैं आंखों को, जिसके लिए कवियों ने, गीतकारों ने बहुत खूबसूरत से गीत लिखे हैं।

श्रुतो, हमारी आंखें हमें केवल चीजें नहीं दिखाती, वो हमें दुनिया से जोड़ती हैं। माँ का चेहरा, बचपन की यादें, प्रकृति के रंग, किसी अपने की मुस्कान, इन सबको देखने की दृष्टि से ही संभव है। आंखों को दिल की जुबां भी कहा जाता है। कई बार जो अपनी जुबां से नहीं कह पाते वो सब आंखें कह देती हैं। बस पढ़ने वाले की नजर चाहिए।

0: श्रोताओं, कई बार हमें जो चीजें प्राकृतिक रूप से मिली होती हैं, हम उनकी कद्र नहीं करते
1: है
0: जब हम उन्हें खो देते हैं। इसलिए आंखों की देखभाल हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। लीजिए सुनिए एक और खूबसूरत सा गीत तीन देवियां फिल्म से। माफ कीजिएगा, अभी जो गीत आपने सुना था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, ये गीत था फिल्म तीन देवियां का। और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, और इसे हमने लिया है फिल्म किस्मत से। ओपी नैयर का संगीत।

श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। इस गुरुवार यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कैंसर से संबंधित जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सुन। आप हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं और साथ ही इसे मोबाइल ऐप मिल सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फोन लगाना न भूलिएगा आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। और लीजिए अब हम सदाबहार नगमों का सफर आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं सफर फिल्म का ये गीत।

एयरफोर्स डे पर हम भारतीय वायुसेना के हर जवान, अधिकारी और उनके परिवारों को नमन करते हैं। आइए उनके साहस को सलाम करें, उनके अनुशासन को सलाम करें, उनकी सेवा को सलाम करें और वर्ल्ड साइट डे पर हम खुद से एक वादा करें कि अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक रहेंगे, क्योंकि जो आँखें सपने देखती हैं उन्हीं आँखों से हम उन सपनों को सच होते हुए देखते हैं।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशो भूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशो भूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। दाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, कॉन्टेक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 100 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
3: इन सुधारों का

0: अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। वो स्वचलित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई, छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए।
2: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है, क्योंकि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया सूचनाओं के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं पूजा।

0: सेवी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेवी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर। सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

0: जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने पर उभरी है, जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
1: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल

0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने विरहामियामा उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई यह बैठक डॉ जयशंकर की इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। उसने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रह बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल। तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है। फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर अन्ना की भूमिका को काफी सराहा।
3: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जाब्दुल
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
4: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। जगाती वो, मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। खेलों में पेइचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई है।

0: And Gill retained the top spot, scoring an unbeaten 223 against the West Indies in the ODIs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Shagun. Modi marks 25 years in public office, says won't stop till 2047, asserts we will do it. 140 crore Indians will build Vikasit Bharat, pitches for rule-based, free and open global maritime order, leads the Asian Age. May the grace of Vignaharta bring welfare to all. PM Modi prays at Sri Vinayak Temple in capital upon completing 25 years in public office. Right. Headlines, RBI raises repo rate to 5.5% amid calibrated tightening. Senior IPS annual courses in ChatGPT, generative AI, cyber security and integrative wellness, or they will receive lower appraisal scores. Senior and finally, math star Mahesh Kakre clinches Ramanujan Prize for fundamental work in algebraic number theory. And with that, back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate 10th India Mobile Congress at Yashobhumi in New Delhi this morning. 57 GST Council meeting to be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecast heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manu Shah and the first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash semi-final at China Smash in Beijing. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: यह आकाशवाणी आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से.
3: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है. प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग.
4: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, हम था कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 21 सितंबर. और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रयागराज से बीनू प्रजापति और बुढ़ार मध्य प्रदेश से सविता सोनी. आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई. हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र.
5: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल.
6: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का

जो समय के बीत जाने के बाद भी स्पंदित होती रहती हैं। कुछ नाम किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम किताबों के साथ साथ देश की स्मृति में इत हो जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है अमर शहीद बाजी राउत का, जिसे याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि उस साहस होती है। उस उम्र में उन्होंने अपने हाथों में देश की आन थाम ली थी। इतिहास के पन्नों में धड़कती एक ऐसी घटना जिसकी नमी कभी सूखी नहीं। एक नाव थी, इन्हें 12 साल के एक छोटे से बच्चे का अडिग साहस, एक ऐसा क्षण जो इतिहास को उजालों से भर गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए वो कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर नामक गांव में हुआ था, जो ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाजी राउत एक निर्धन मल्लाह परिवार से संबद्ध थे। उनके पिता का नाम हरि राउत और मां नाम रानिया देवी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार संकट में आ गया। इस कठिन परिस्थिति में उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया। वो आसपास के घरों में धान कूटने और मजदूरी का अत्यंत कठिनाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। आर्थिक कठिनाई के कारण उनकी मां बाजी राउत की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाती थीं। लेकिन जीवन की पाठशाला बड़ी थी। बाजी राउत ने बचपन से ही अन्याय और गरीबी को देखा था। उनके जीवन ने मेहनत के पसीने को देखा था और उनके भीतर साहस, स्वाभिमान और निर्भीकता के संस्कार पड़े।

ओडिशा की ढेंकनाल रियासत अपने दमनकारी और क्रूर शासन के लिए कुख्यात थी। प्रजा पर करों का बोझ था, बेगार और शासन की कठोरता ने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। ये वो समय था जब देश में स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही देसी रियासतों और राज्य अत्याचारों के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन भी आरंभ हुआ। ढेंकनाल में भी जनता का आक्रोश बढ़ा और वहां प्रजामंडल का गठन हुआ। ढेंकनाल प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे। ने कोने में घूमकर युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। बालक बाजी राउत अपने गांव नीलकंठपुर में होते, उनकी बातें सुनते। निर्दोष ग्रामीणों पर सिपाहियों के अत्याचारों ने उनके बाल हृदय को भीतर तक उद्वेल। छोटी सी उम्र में ही बाजी राउत ने स्वयं को प्रजामंडल आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया और अपना सामाजिक जीवन एक सजग बाल क्रांतिकारी के रूप में आरंभ किया। प्रजामंडल आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत करने और आंदोलनकारियों के बीच संवाद तंत्र को सुचारू बनाए रखने के लिए बच्चों और किशोरों की एक विशेष शाखा गठित की गई, जिसे वानर सेना कहा गया। बाजी राउत इसी वानर सेना में शामिल थे। वानर सेना के सदस्य ब्रिटिश पुलिस और राजा के सिपाहियों की गतिविधि पर नजर रखते, आंदोलनकारियों तक गुप्त सूचनाएं और संदेश पहुंचाते, गांव में ढोल बजाकर सभा के आयोजन की सूचना लोगों को देते थे। इसके साथ ही नदी, घाटों, जंगलों और गुप्त रास्तों की पहरेदारी भी, कि पुलिस या राजा के सिपाही अचानक हमला न कर सकें। बाजी राउत दिन रात इन कामों में सक्रिय रहा करते थे। उनके पुत्र थे, इसलिए अंधेरे में नदी पार कर गुप्त संदेशों के आदान प्रदान में विशेष भूमिका निभाते। इस तरह वो और उनके बाल साथी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर आंदोलनकारियों को पुलिस की दबिश से बचाते थे। 1938 का साल आते आते ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अत्यंत तीव्र हो गया था। चारों ओर से विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। जनता अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों ने जनता और शासन के बीच तनाव को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य केंद्र था भुवन गांव। ब्रिटिश और रियासत की सेना आंदोलन से अत्यंत परेशान हो उठे और दमन चक्र तेज हो गया। उद्देश्य था किसी भी तरह प्रजामंडल आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना, लेकिन आंदोलनकारी तो जैसे स्वयं सैनिक बनकर निकल पड़े थे।

ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। राजा और ब्रिटिश हुकूमत आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए आक्रामक हो चुके थे। 10 अक्टूबर सन 1938 को ढेंकनाल राजा के सिपाही और ब्रिटिश पुलिस का संयुक्त दल भुवन गांव पहुंचा। पुलिस नेताओं को पकड़ना और ग्रामीणों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका प्रतिरोध किया। इस तरह

ये संघर्ष बढ़ने लगा। पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चला दी। इसके बावजूद ग्रामीणों का उग्र विरोध जारी रहा। स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस और सशस्त्र बलों ने गांव से लौटने की सोची। वो सुरक्षित ढेंकनाल शहर पहुंचना चाहते थे और वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता नीलकंठपुर घाट से होकर ब्राह्मणी नदी को पार करना था। 11 अक्टूबर सन 1938 को पुलिस बल नीलकंठ घाट पर पहुंचा। आधी रात बीत चुकी थी। नदी तट पर केवल एक नाव बंधी थी। उस रात पहरेदारी का जिम्मा 12 साल के बाजी राउत पर था। प्रजामंडल के शीर्ष नेताओं ने बाजी राउत को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस या राजा के सिपाहियों को नदी पार करने के लिए कोई नाव न दी जाए, क्योंकि वो ढेंकनाल से और सैन्य बल लाकर भुवन गांव और नीलकंठपुर में धावा बोल सकते थे। आधी रात को बाजी राउत के पास हथियारबंद पुलिस पहुंची। आदेश आया, नाव खोलो और नदी पार कराओ। सामने बंदूकें थीं और पीछे संगठन का आदेश और गांव की सुरक्षा का प्रश्न। बाजी राउत ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गया। बाजी राउत को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। उन पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नाव की रस्सी को जोर से पकड़ रखा था। बाजी राउत को धक्का देकर पुलिस नाव में बैठने की कोशिश करने लगी। तब उन्होंने शोर मचाकर गांव को सचेत करना शुरू किया। बौखलाए अधिकारी ने राइफल की भारी बट से बाजी राउत के सिर पर प्रहार किया। उनके सिर से खून बहने लगा। बावजूद इसके उन्होंने नाव की रस्सी छोड़ी नहीं और गांव वालों को आवाज देते रहे। इस पर क्रोधित पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी। बाजी राउत वहीं ब्राह्मणी नदी के तट पर शहीद हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग घाट की ओर दौड़े। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस तरह बाजी राउत के कुछ अन्य साथी लक्ष्मण मलिक, फगु साहू आदि भी शहीद हो गए। बाजी राउत की शहादत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उनकी अंतिम यात्रा ने उड़ीसा में जनता को आक्रोश से भर दिया। ज्ञानपीठ सम्मान से अलंकृत उड़िया कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी राउत शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी और इस बाल शहीद की स्मृति को साहित्य में अमर कर दिया। उनका भावपूर्ण स्वर यही था कि ये चिता नहीं साथियों, अंधेरे देश में स्वतंत्रता की वो ज्योति है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि बाजी राउत का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, बाजी राउत का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय के गाए कुछ मालवी लोकगीत।

अभी आपने सुने सुंदरलाल मालवी और साथियों के गाए कुछ मालवी लोकगीत। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, वक्त है सुगम संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुरमीत सिंह दंग के गाए की गाई कुछ गज़लें। आगाज़ कर रहे हैं दानिश की लिखी इस गज़ल से।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और हम आपको सुनवा रहे हैं गुरमीत सिंह दंग की गाई कुछ गजलें।

ये थी मिर्ज़ा गालिब की लिखी गज़ल, और लीजिए कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं रोहितास अस्थाना के लिखी ये गज़ल, आवाज़ गुरमीत सिंह दंग की।

सुगम संगीत में अभी आपने सुनी गुरमीत सिंह दंग के गाई कुछ गजलें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी श्रुति साडोलीकर का गाया राग बहादुर तोड़ी। संगीतकार हैं तबले पर यूसुफ खान और सारंगी पर मोइनुद्दीन अली।

0: अभी आपने सुना विदुषी श्रुति साडोलीकर का गायन। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: दमोह जिले से मानसून की विदाई हो चुकी है, मौसम भी बदल गया है। सुबह शाम जहां मौसम में ठंडी देखी जा,
0: माफ कीजिए, पेश है जिले की चिट्ठी।
1: सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में किसानों के निशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। किसान 17 अक्टूबर तक निर्धारित 23 पंजीयन केंद्रों पर ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा रहे हैं। इस खरीफ सीजन में जिले में सोयाबीन का रकबा करीब 50,000 हेक्टेयर में है। इसमें 35,000 से अधिक किसानों ने सोयाबीन की बोनी की है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए भी किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने बारिश में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी 18 सड़कों के लिए कुल 6,66,18,000 रुपए के टेंडर जारी किए हैं। पहले चरण में 10 सड़कों की 51.5 किलोमीटर लंबाई पर 3,85,72,000 खर्च होंगे। दूसरे चरण में 8 सड़कों की 52.5 किलोमीटर लंबाई पर 2,80,40,000 रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन जेपी सोनकर ने बताया है कि एसटीएमसी स्कीम पहली बार लागू की गई है। इसके तहत एजेंसी को 1 साल तक सड़क की देखरेख करनी होगी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत पिछले दिनों दमोह स्टेशन से द्वारका सोमनाथ यात्रा ट्रेन निकली, जिसको संस्कृति और धर्म न्याय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में दमोह जिले के 468 तीर्थयात्री सहित रक्षक और पर्यवेक्षक सवार हुए। हमारे संवाददाता से बातचीत में मंत्री श्री लोधी ने बताया,
2: प्रसन्नता का विषय है कि तीर्थदर्शन की एक ट्रेन दमोह से होके जा रही है, जिसमें 468 यात्री जा रहे हैं, 10 अनुरक्षक, 1 पर्यवेक्षक।
1: पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद दमोह से कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबी फोर लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब स्टेट हाईवे 63 को 2 लाइन से 45 मीटर चौड़ा करके 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। ऐसा होने से दमोह कटनी के बीच यात्रा समय में करीब 1.5 घंटे तक की कमी आने का अनुमान है। जबलपुर मंडल के डीआरएम कमल कुमार तलरीजा ने सागर से दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां चल रहे करीब 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहा नया एफओबी पुराने ब्रिज से करीब 3 गुना अधिक यानी 12 मीटर चौड़ा होगा। इसमें यात्रियों के लिए लिफ्ट और एक्सकलेटर की सुविधा भी रहेगी। जिले के तेंदुखेड़ा और जबेरा क्षेत्र की सदियों पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को अब संरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने दोनों तहसीलों के 5 प्राचीन स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दमोह में 2608 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 2370 कनेक्शन भी किए जा चुके हैं। पिछले दिनों सीएसआईआर की 85वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली स्थित एएनएससी परिसर के भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डाक टिकट का विमोचन किया। इस डाक टिकट की डिजाइन दमोह निवासी मयंक गाडिया के द्वारा तैयार की गई थी। दमोह पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सीन ऑफ क्राइम मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है। खास बात यह है कि इस वैन के जरिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से ही साक्ष्य का मनोवैज्ञानिक तरीके से संकलन, संरक्षण और प्राथमिक परीक्षण कर सकेगी। दमोह जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे दमोह दिल्ली की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और रक्त कैंसर से संबंधित जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील लोकवानी से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर तो सुन ही सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731, तो फोन करना न भूलिएगा सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आरती जादून का नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का कार्यक्रम जिसकी आपको इंतजार रहता है, आपने जो खत भेजे हैं उसमें से कौन से पत्र शामिल हुए, कौन से गीत सुनवाए गए, आप हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं। तो बिना देर किए हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, पर सबसे पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे भारतीय सिनेमा के अद्वितीय और दिग्गज कलाकार श्री नाना पाटेकर जी को। जैसा कि आपने भी सुना ही होगा, ये आकस्मिक खबर और ये अत्यंत दुखद समाचार आज की सुबह लेकर के आई है। अपनी दमदार अभिनय, बेमिसाल संवाद अदायगी और संवेदनशील व्यक्तित्व से उन्होंने हर दर्शक के दिल पर राज किया। उनका यूं चला जाना कला और फिल्म जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके रूप में हमने एक ऐसा कलाकार खो दिया जो किसी भी पात्र को, किसी भी किरदार को अपने अंदर यूं उतार लेता था कि हम थोड़ी देर के लिए नाना पाटेकर कौन है ये भूल जाते थे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम उन्हीं की फिल्म के एक गीत से कर रहे हैं।

ये है परिंदा फिल्म का गीत, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। खुर्शीद हल्लूरी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

इसको गीत के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर, फैजन बी, शाकिर इस्लाम, बाबा करिश्मा, सिमर, सानिया, शकील पठान, बिस्मिल्ला, गदर शेख और नीलोफर शेख। जिला नांदेड़ से चांदनी, अयूब सैयद, बाल राजे, अमन सैयद, महिरा सैयद। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। लुधियाना से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशील, नीलम, बीकेपुरी, कैलाश, रमा, आरएसपुरी। राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे। पीपरपारा, पालचुवा, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। आदर्श नगर, मलोट, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है ममता। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, रोशन का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहा है शाजापुर से एम राजावत, राज, मधु, राशिद, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज।

आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राज जावत ने। इंदौर से महेश रायकवार, अग्रता, नितिन कृष्णवी, सरिता, अहिल्याबाई रायकवार। टिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा। ग्राम रतनपुर तहसील झिरन्या जिला खरगोन से भागीरथ नायक, जितेंद्र सुभाष, रविंद्र शिवानी, अश्विनी हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन। मैसूर सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, अमन, बच्चू शेख, चीना शेख, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस। मैसूर से ही हुमेरा नाज, सुमेरा, अबीहा, अरहान, हमजा और मुजम्मिल। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल हक, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर, मोहम्मद हमजा डावर और तुलसी राम वर्मा। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं ममता फिल्म का ये गीत।

लीजिए अब सुनिए संगम फिल्म का गीत, इसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, मुश्ताबा, राउफ और शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश और वैशाली कटनकर, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, वनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, सविता और स्वाति माखीजा, जिला जालना महाराष्ट्र से नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विनी, औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हर्सुल सावंगी, वैभव, गौरव लोखंडे, रिंधोरा देवी से मेघराज, युवराज कोलते, बदनापुर से रुद्र कोलकर, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु करमरकर, नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली चुंबले और प्रीति चांदनी, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया।

लीजिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है मेरे सनम। इसे गाया है आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, धुन है ओपी नैयर की, और इस गीत को सुनना चाहा है कोली मोहल्ला छबड़ा से नूर बानो, सलमा बानो और रुखसार ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं देवास से अनंत चिखले, अशोक पडियार, अनिल महाजन, ओम प्रकाश परमार, जगदीश नागर, जगदीश नागपाल, महेंद्र शर्मा, राजेंद्र पारिक और उमेश चौहान। चांदूर बिस्वा से किशोर वानखेड़े, उषा विशाल वानखेड़े, मोताला से राज और राजवीर गवई, वाशिम महाराष्ट्र से राजेश खंबायतकर, प्रेमा, राजश्री भावसार, राजू और प्रीति खंबायतकर, शांतिनगर खरसोत कलां जिला उज्जैन से असलम खान दुलावत, शबीना फिरदौस, फलक अफसा, अयान दुलावत, बांसवाड़ा राजस्थान से अनीस खान और अफान खान, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमधाड़े, स्वराज स्वरित पोपलवाड़, संघर्षा संविधान धोंगडे, हिंगोली खेड़ावाड़ी से शाहजी बोडके, ग्राम आष्टी हदगांव से सुधाकर कामले, संदीप कामले, पूर्णा देगांव से सदाशिव थौरात, वनोजा तांडा जिला वाशिम महाराष्ट्र से जय राठौर, सुनील, इंदुबाई, आशीष और सानिका राठौर, धानोरा विटाली महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश, सचिन, प्रेम, श्रेया, श्रिति, जामोद जलगांव से उषा और संतोष काटे।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। लीजिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोफेसर फिल्म का गीत। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और अनुरोध करता है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। सिमगा छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सनी, कोमल यादव। विराहित मुर्तिजापुर से हारून शाह और शाजिया बानो। उमरखेड़ से मिलिंद खंदारे, भारती, नागसेन, प्रीतम कुमार, सारा, स्वाति, अश्विनी, धम्ममित्र, एमके खंदारे। क्रांतिनगर नांदेड़ से प्रज्ञेश वडगांवकर, कांचन, नाथराव, शांताबाई, प्रणाली, अद्विक, आरवी, प्रज्ञोक्ति, अभिजीत खंडालगे और लकी, स्पंदन। बीड़ शहर से रंजीत कुमार, नामदेव, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और गबरू थोरात। नांदुरा से सोपान तायड़े, विजया, अमोल और सरिता तायड़े। इन्हीं के साथ हैं वसंतराव भोजने, सुनिंदा राजू और सोनू भोजने। खंडवा रोड सनावत से अबरार, इमरान, इरफान, वसीम, सोनू, सईदा, आयशा और सुल्ताना। बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग। आप सभी की पसंद पर लीजिए पेश ये गीत।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सूरज फिल्म के गीत के साथ। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और अनुरोध करता है देवास से मनु ठाकुर, योगेंद्र सिसोदिया, नेत्रा रावणकर, जाकिर हुसैन नजमी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, ईशिका और तेजल यादव। बोराला धरण मालेगांव से दत्ता घायाल, सुनीताबाई, सानिका, गजानन घायाल। लाबरियाबेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन। चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। नंदानगर सुलगांव से नंदराम मंशारे, हरी, रिंकी, रेखा, रीना, वर्षा, राजकुमार मंशारे। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। शेरीवडने रकोला से अरुणा दामोदर। इन सभी की पसंद पर पेश है ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है यादगार फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले, कुमार खाड़ी इंदौर से उमेश कश्यप बल्लू हेमलता और मिलाबाई कश्यप, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा रियाज रिफाकत शमरीन परवीन मोहम्मद रिहान माहिरा नूर, बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत दीपक मयंक दीक्षा कुशमूणत नेहा जैन चेतन नाटा और दिलीप सिंह पंवार, रंथभंवर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी मॉरिस तैयब अकबर अनस हसन मुकेश नारोलिया और जानकी लाल वर्मा, ग्राम गोविंदगढ़ माझीवाला श्रीकरणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा उर्मिला गुड्डू जीनू मनु आदित्य भूमि राखी अमृत बड़वाल शिव सेठी और स्माइल टुटेजा, अमरावती से चंदू हातोले मुंबई कल्याण से संजय हातोले लच्छनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू, सनावत से राजकुमार बोड़ाना रानू लक्ष्मी और यशकुमार बोड़ाना, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला हैप्पी जेएस नायक शोभा नायक, इन्हीं के साथ हैं खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार मोहम्मद साकिब पवार हसनैन पवार, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े वनीता छोटू पूजा रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे वंदना भूपेंद्र झवर तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे।

और लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी नगमा। फिल्म है कभी कभी, आवाज मुकेश की है, साहिर के बोल हैं और धुन बनाई है खयाम ने।

सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गौड़। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जास्मिन, प्रयागराज भट्ट। प्रमिलागंज जालौर जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल।

0: है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन EIR और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी।
2: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हर सुबह जब हम जागते हैं अपनी पूरी ऊर्जा से नया स्वप्न गढ़ने के लिए, तब क्या हम याद करते हैं कि आज भी कोई प्रहरी अपने हिस्से का सुकून देश के नाम लिख रहा है? क्या हम रोज ये महसूस करते हैं कि किसी की चौकन्नी आंखों के भरोसे करोड़ों आंखों में भविष्य के सपने पलते हैं? श्रोताओं, सैनिक होना केवल वर्दी पहन लेना नहीं है, ये अपने हिस्से की धूप किसी और के आंगन के नाम कर देना है। ये अपने घर परिवार को किनारे रखकर देश के नागरिकों की सलामती को सबसे ऊपर रखना है। वो जवान जो सरहद पर खड़ा है, दरअसल वो केवल सीमा की रखवाली नहीं कर रहा है, वो हमारे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बीच एक अडिग विश्वास बनकर खड़ा है। और आकाश के प्रहरी हैं हमारे वायु योद्धा, जिनके लिए आसमान कोई सीमा नहीं बल्कि संकल्प का विस्तार है, जिनके विमानों की गर्जना में भारत के सामर्थ्य का स्वर सुनाई देता है और जिनकी उड़ानें हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र का आत्मविश्वास जब पंख लगाता है तो आकाश का विस्तार भी छोटा पड़ जाता है। आज 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। आज का दिन उन जाबाज सैनिकों को सलाम करने का दिन है जो आकाश की ऊंचाइयों को उसके पूरे गौरव से छूते हुए कहते हैं, नभः स्पर्शम दीप्तम। हमारे वो वीर जवान जिन्होंने आकाश को अपनी कर्मभूमि बनाया और साहस को अपनी पहचान। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने वीर सैनिकों की, बात करेंगे उस ऋण की जिसे किसी भी तरह से चुकाया नहीं जा सकता है, बात करेंगे उस साहस पराक्रम बलिदान और गौरव की जिसे कोई भी पदक पूरा बयान नहीं कर सकता, और उस विश्वास की जिसके कारण हम चैन की नींद सोते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप बताइए हमें कि जब आप अपने सैनिकों को याद करते हैं तो आपके मन में कौन सा भाव सबसे पहले उठता है? अपने वीर सैनिकों को याद करते हुए आज आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए हमें। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
3: नमस्कार, मैं लक्ष्मी ठाकुर बात कर रही हूँ, ग्वारा ललन खीरा जिला छतरपुर से।
2: लक्ष्मी ठाकुर जी, कैसी हैं आप?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: हम भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो इसी का संदर्भ लेते हुए आज हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो सैनिकों के नाम कुछ संदेश दें,

0: भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी के उनने लहुए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं, है ना। तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं। आपने अपनी भावनाएं उनके लिए रखी।
1: मैं भी अपने तरफ से तीनों सेनाओं को नमन करना चाहता हूँ। मैं
0: तीनों सेनाओं का बहुत आभार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नीमे श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अमित जी कैसे हैं?
1: बलजला सिंह जी बात कर रही हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ये आपकी आवाज ही मैं पहचाने और जिमान के जरिए।
0: हाँ।
1: आपकी आवाज हम लोगों के कानों तक पहुंचती है, जिमान के चलिए कि हमारे जब कानों के द्वारा फिर अंदर रग रग में जाती है तो प्रफुल्लित हो जाता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका प्रेम है। अच्छा अमित जी, 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके प्रति आपके मन।
1: बिल्कुल, इस दिन आसमान में सफेद सुकोई सुकोई तेज और प्रचंड जैसे आदमान जैसे इनके वो बताए जाते हैं, तो इसमें क्या है कि सभी लोगों को सजग रहना चाहिए।
0: वो दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, है ना?
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।
0: आसमान में उनकी वीरता के कितने ही कारनामे हमने देखे हैं, और कई युद्ध हुए हैं जिसमें हमने ये महसूस किया है कि जमीन की सुरक्षा, अपने जलीय सीमाओं की सुरक्षा, लेकिन अगर आसमान में आप प्रबल हैं तो फिर आप जीत जाते हैं, जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो हमारी वायुसेना के जो वीर सैनिक हैं वो लगातार तत्पर रहते हैं और रक्षा करते हैं देश की। जो सैनिक हैं, तीनों ही सेनाओं के जो सैनिक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए आपके मन में क्या भाव हैं?
1: तो बस इसके लिए मैम हम 94वां स्थापना दिवस 2026 में, इस वर्ष 2026 में भारतीय स्थापना के 94 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है।
0: देखिए, जो हमारी भारतीय वायु सेना है उसका वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, है ना? इसका भाव है कि गौरव और तेज के साथ आकाश को स्पर्श करो, और बिल्कुल हमारे जो सैनिक हैं इसी तरह से आकाश को स्पर्श करते हैं, हमारी सुरक्षा में वो तैनात रहते हैं। तो अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत आभार। इन पंक्तियों के साथ कि प्राणों को हमने सदा अकिंचन समझा है, सब कुछ समझा हमने धरती की माटी को, जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ने हर उस परिपाटी को। हमारे सैनिक बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और आपको करते हैं धन्यवाद।

शहीद चरण सिंह जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए जा रहे थे और एक घाटी में उनका दुर्घटनाग्रस्त वाहन हो गया था, उसमें उनका निधन हो गया था, उनके लिए भी हम तो हजारों की तादाद में संख्या थी उस दिन। हम लोगों को

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैम, हम ग्राम लक्ष्मणपुरा जिला टीकमगढ़ से अखिलेश जैन बात कर रहे हैं। मैम,
0: अखिलेश जी कैसे हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं मैम?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और आज हम अपने सैनिकों को याद कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, क्यों ना हमारे श्रोता सैनिकों के नाम कुछ संदेश दें, वो क्या महसूस करते हैं अपने वीर सैनिकों को लेकर, ये हम जानना चाहते हैं।
1: मैम आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है 8 अक्टूबर का मैम, और इसमें देखिए सभी श्रोता जानते हैं और साथ ही साथ मैम हम सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं मैम, जो हमारे सैनिक हैं ये अपने परिवार की चिंता ना करके अपने देश की चिंता करते हैं मैम, अपने लिए जागते हैं, उनके घर में यदि कोई भी संकट आ जाए तो उसकी परवाह नहीं करते हैं, फिर भी देश की चिंता करते हैं मैम। तो ये सबसे वो है मैम जो कि अपने परिवार की चिंता ना करके गर्मी धूप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं मैम अपने लिए, तो ये तो उनको मैम इतना भी इनका वो किया जाए मैम कम है।
0: बिल्कुल, हम रातों को चैन से सोते हैं क्योंकि वो रात भर जागते हैं, तैनात रहते हैं, चौकसी करते हैं, तब हम चैन की नींद सोते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों को थोड़ा सा किनारे करके वो देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करते हैं।
1: जी मैम।
0: अखिलेश जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो सैनिकों की हमने बात तो की है लेकिन जो भारतीय वायुसेना है उसका पराक्रम अद्भुत रहा है। इतिहास की तरफ जब हम लौटते हैं तो हम पाते हैं कि आजादी के तुरंत बाद 1947-48 में ही जो कश्मीर में घुसपैठ हुई थी, एक संघर्ष हुआ था, उसमें जो हमारी भारतीय वायुसेना ने किया था वो बेहद रोमांचक और बहुत ही स्मरणीय उसका योगदान।

0: के गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जी कैसे हैं?
1: बस बस।
0: आप जानते ही हैं कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो श्रोता हैं हमारे वीर सैनिकों के नाम संदेश दें, अपनी कुछ भावनाएं उन तक पहुंचाएं।
1: वीर संदेश भी क्या है, उनके कारण तो अपन जो जा ही रहे हैं, वो तो उनने बहुत मेहनत करी और पुराने लोगों ने भी वो मेहनत करी जिसका उपयोग अपन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको तो बहुत सम्मान देना चाहिए, वो तो ईश्वर के सेकंड रूप है यही मान के चलो।
0: बिल्कुल, भगवान का दूसरा रूप है। और कितने ही लोगों
1: तो
0: का
1: क्या है कि उनके फैसिलिटी से तो अपन लोगों को आराम है, वो नहीं करते और वीरगति नहीं होती उनकी और सीमा पे नहीं रहते तो अपने हाल
0: और से सीमाओं की रक्षा वो करते हैं।
1: वो करते हैं,
0: है ना, जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, हमारे वीर सैनिक 24 घंटे तैनात देश की सुरक्षा करते हैं। और अगर हम वायुसेना की बात करें गोविंद जी, तो देखिए जो 1971 का युद्ध था बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, उसमें वायुसेना था, लौंगेवाला का युद्ध कोई भूल नहीं सकता है ना। इसी तरह से 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए दूत चलाया गया था, और इसमें भी जो भारतीय वायुसेना है उसने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे दुनिया देखती रह गई। और आज जो हमारी सेना है 0 से 50 डिग्री नीचे तापमान में सियाचिन पर तैनात है और सैनिकों तक रसद और रक्षा पहुंचाती है, रक्षक सेवा पहुंचाती है, है ना। तो हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको हम क्या ही दे सकते हैं, है ना।
1: और अभी भी तैनात है ना, अभी भी
0: 24 घंटे वो तैनात है,
1: 24 घंटे वाले है ना वो, तो बिल्कुल दिवाली होली उनकी वो जाने।
0: त्योहार हमारे होते हैं वो कहाँ त्योहार मनाते हैं, वो तो सीमाओं पर जो भारत माता है उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं, है ना। उनका जीवन कितना अलग होता है, सिर पर अल ठोंक भूचालों से, एक आकी जूझते रहे जो अंधड़ और तूफानों से, वो हमारे सैनिक हैं। तो उन्हें हम शत शत नमन करते हैं, किया आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इस प्रोग्राम में मैं पहली बार शामिल हो रहा हूँ।
1: ओहो, पहली बार आपका फोन लगा है,
0: जी
1: तो
0: मैम, बिल्कुल पहली
1: आपको
0: बार।
1: बहुत बधाई कि आपकी मेहनत सफल हुई है।
0: और एक खुशी की बात यह है कि आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है।
1: अच्छा, पहली बार कोशिश भी की। अच्छा, कि
0: बिल्कुल
1: प्रयास में आप सफल हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो
0: बिल्कुल
1: मोहम्मद
0: मैम
1: वकार जी, हमारे जो
0: जी।
1: वीर सैनिक हैं, उनके त्याग, साहस, पराक्रम, बलिदान पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या
0: हाँ
1: महसूस
0: मैम,
1: करते
0: उनको
1: हैं आप?
0: मैं शत शत मतलब नमन करना चाहूंगा, क्योंकि मैम उनके ही मतलब जो हमारे वीर सैनिक हैं उन्हीं की वजह से हम आज सुकून की सांस ले रहे हैं और अपने घरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, क्योंकि वो सरहद पर मौजूद हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो निगरानी वो करते हैं और वो वहाँ डटे रहते हैं जिससे कि कोई अनहोनी ऐसी ना हो देश में। तो मैम
1: बिल्कुल,
0: उनको मेरा बहुत बहुत नमन,
1: हर मन
0: सल्यूट
1: में,
0: करना चाहूंगा मैं उनको।
1: बिल्कुल, हर भारतवासी अपने वीर सैनिकों को सल्यूट करता है। और भारतीय वायुसेना दिवस का अगर संदर्भ लें तो देखिए, 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था,
0: बिल्कुल
1: ऑपरेशन सफेद सागर,
0: बिल्कुल। और अभी
1: बहुत ही
0: कुछ समय
1: ऊंचाई,
0: पहले ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था।
1: बिल्कुल, ऑपरेशन से पराक्रम तो पूरी दुनिया ने देखा। और कारगिल
0: बिल्कुल
1: युद्ध
0: मैम,
1: की मैं बात कर रही थी कि 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर, है ना, दुर्गम पहाड़ियों में छिपे जो घुसे, उनके ठिकानों पर सटीक निशाना करने के लिए जो वायुसेना थी, उसके बमों का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो लड़ाई थी, आधुनिक वायु युद्ध इतिहास में इतनी ऊंचाई पर लड़ी गई पहली सफल लड़ाई थी, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: मैम
1: हमारी जो वायुसेना है, उसके पराक्रम के क्या ही कहने, है ना।
0: जी मैम बिल्कुल
1: बिल्कुल, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे सैनिक होते हैं, ये याचना नहीं,
0: जी
1: रण चुनते हैं, है ना। ये रणवीर, ये
0: मैम
1: शूरवीर जिद के पक्के हैं, ये सच्चे ध्वजवाहक हैं, साहस और संकल्पों के फूल नहीं, शूलों पर ये चलते हैं और विजय पताकाएं। सैनिकों को हम नमन करते हैं, इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और मोहम्मद वकार फरीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।

0: इतने बुरे हालातों में भी तो मुझे लगता है कि हमें काफी उनका सम्मान करना चाहिए, और खासकर के वायुसेना जो है अभी आप देख सकते हैं कि काफी नए उसमें इक्विपमेंट्स भी आए गए हैं और राफेल का भी इंडक्शन हुआ, तो ये भी
1: इसको तो पूरी दुनिया मान रही है और ऑपरेशन सिंदूर में वास्तव में सबने देखा। और जो युद्ध हुए हैं पहले भी, चाहे हम 1947-48 की बात कर लें जो कश्मीर में घुसपैठिए घुस गए थे, या बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की बात करें, या कारगिल युद्ध की बात, वो अद्भुत रहा है। और इसके साथ ही सबसे खास बात ये है मयंक जी कि जब उत्तराखंड में

का कण कण है। जय उन अमर शहीदों की हो, बोल रहा जनगणमन है, बोल रहा जनगणमन है। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं आज को याद किया, उनके साहस के आगे अपना सर झुकाया। समझने की बात यह है कि किसी भी सैनिक का त्याग शायद इतिहास की, लेकिन उसका अर्थ हर उस सुबह में जीवित रहता है जिसे हम बेखौफ होकर जीते हैं। और हमारे वायु योद्धा चीरती हुई आकाश तक नहीं जाती, वो हर भारतीय के मन में ये विश्वास जगाती है कि देश की आन पर आने वाली हर आंधी के सामने भारत के प्रहरी अडिग खड़े हैं। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस पर उन सभी वीरों को हमारा नमन जिन्होंने अपने साहस से देश की सीमाओं को सुरक्षा और अपने त्याग से तिरंगे को ऊंचाई प्रदान की है। और चलते चलते आपसे हम यही कहेंगे कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को हम भी पूरी ईमानदारी से निभाएं, यही हमारी ओर से सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। इसी संकल्प के साथ अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को।

का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस आयोजन में यहां 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पुणे में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें करेंगे और कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा जा सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हरदेप मीका, बलविंदर बिरग, जा बिरग। अगले श्रोता आदर्श नगर मलोट से हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे। गुलजार ने, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फरमाइश हमें आई है थाना रोड बक्सर से, श्रोता है अजीत गुप्ता, आशीष गुप्ता, आयुषी और सानवी। अगले श्रोता कवर कॉलोनी बड़वाह से हैं, प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवा और मीनू राज शिमाली। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

गीत सुनेंगे फिल्म जुर्म। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है बोरखेड़ा पीप्रमल जिला उज्जैन से। श्रोता हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नेहरा, कुश मूड़त। अगले श्रोता आज़ाद नगर बक्सर और महराज जहां। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

मुकेश की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म आनंद में। संगीतकार हैं सलिल चौधरी। फरमाइशा में आई है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से। श्रोता है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला जी। अगले श्रोता गोला बाजार बक्सर से हैं। शधनंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा जी आर्य। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आंधी से गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, गीत लिखा गुलजार ने, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है असालतपुरा मुरादाबाद से, श्रोता हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, बिलाल अंसारी और ज़ुबेर अंसारी। अगले श्रोता डाब वाली हरियाणा से हैं, जे का बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट बोन्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 7।

0: मुंशी झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर देवी से बोला,
1: हजूर देख लीजिए सरकार, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार।
2: अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे।
1: क्या करूं हजूर, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, अब घर देखूं के काम करूं।
2: अरे तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते?
1: अब हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ मदद करेंगी ना।
2: हाँ हाँ तुम ठीक ठीक काम तो करो, मुझसे जो हो सकेगा मैं दे दूंगी।
1: सरकार हजूर इतना ख्याल करती हैं कि क्या बताएं, अरे दूसरे घरों में तो मालकिन बात भी नहीं पूछती, ऐसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है। अल्लाह।

0: ही जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है।
1: बड़े घर की औरतें देखी हैं,
0: वो आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती हजूर।
2: चल झूठे कहीं के, मैं ऐसी कोई खूबसूरत हूँ क्या?
0: अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी पैसे वालियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात है ही नहीं। उनके चेहरे पर ऐसा नमक कहाँ सरकार।
2: अच्छा अच्छा, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा।
0: भला सरकार, मगर 2 रुपए दे देती तो।
2: अच्छा अच्छा, ये लो और।
0: जाता हूँ सरकार, जाता हूँ। अब आप नाराज हो तो एक बात पूछूं?
2: अरे क्या पूछते हो, पूछो ना, मगर जल्दी। देखो मुझे चूल्हा जलाना है ना।
0: तो सरकार जाएं, फिर
2: कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी भी नहीं है।
0: दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या?
2: तो कोई नातेदार नहीं है उनका?
0: तो कोई दोस्त होंगे। सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ।
2: वालियों का ही मोहल्ला है ना?
0: हाँ सरकार है तो वही, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, देर से तो नहीं आते।
2: नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ वो कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता चले जाते हैं।
0: बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार।

0: वाले तो शक करने ही लगते हैं ना।
1: करने का मरज है, और कोई नहीं मिला तो सफाई वाला ही सही। इस फुतने से ना जाने तुम कैसे बातें करती हो।
2: मुझे उसकी सूरत से क्या करना है जी, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं।
3: श्याम बाबू ने बेले का गज, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली,
2: आप?
1: कौन, मैं?
2: जी हाँ आप, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हैं, और जाते तो वहाँ हैं जहाँ जलसे होते हैं।
1: बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। तुमसे कौन कहता है? यही मुन्नू।
2: मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा।
1: और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आंखों का आशिक हूं। अगर अप्सरा
2: नीचे खेलने चली गई है।
1: नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोट रहे बगिया दौड़ती रहती है, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए।
2: क्या, 3 लड़के? अरे बड़ा गजब हो गया।
1: इसका अभी पता नहीं चला, ईश्वर जानता है तुम पर यह गजरा बहुत खिल रहा है।
2: चलो अब बातें ना बनाओ।
3: तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा,
0: हजूर हजूर, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा। मुझे आपका बहुत ही, अब क्या बताएं सरकार, जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों से ठोकना पड़ती थी। अब क्या है कि मिजाज की सीधी है, हमारे जात की औरतें बड़ी पीछे एक भी पाक ना मिलेगी।
2: तुम लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं?
0: क्या करें हुजूर, क्या कहें, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी ना छोड़ा दे। सफाई वालियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है हुजूर।
2: चल झूठे कहें के, बाबू साहबों की औरतें क्या झाड़ू वालियों से भी गई गुजरी होती हैं?
0: अब सरकार कुछ ना कहलाए, हजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआई नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उसे बोलने को जीना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने आज तक नहीं देखी।
2: अच्छा चल झूठा कहीं का, इतनी खुशामत करना किससे सीखा है भला?
0: खुशामत नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। की के सामने खड़ी थी, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसा धन दिया है वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही आंखें नीची कर ली, आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है।
2: अच्छा वो लंबा सा सांवले रंग का जवान
0: मुझसे कहने लगे कि किसी तरह जो मुझसे वहां तुम्हारी दाल न गलेगी।
2: तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़े की आंख फूट जाए। अरे जब इधर से जाता है खिड़की ला रहती है, अब कह देना कि इधर भूल कर भी ना ताके। वो
0: कह दिया है हुजूर, अब हुक्म हो तो जाऊं, और तो कुछ साफ नहीं करना है हुजूर। सरकार के आने की बेला हो गई है, अब मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है।
2: अच्छा ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से तो बच जाओगे ना।
0: जी जी जी, अल्लाह हुजूर को सलामत।

0: रखे, तो यही जी चाहता है हुजूर कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं हुजूर, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है।
1: मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले,
2: मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह ना लगाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। ये भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी?
3: क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी।
2: थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है।
3: मुझे तो ख्याल नहीं आता अब होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ।
2: तो क्या वो दीवारों से बातें करता रहता है? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इस मोहल्ले का मुसलमान लड़का है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की के पास खड़ी रहती हो?
3: चिक तो पड़ी हुई है।
2: चिक के पास खड़े होने से बाहर का है।
3: ये मुझे मालूम नहीं था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं।
2: हाँ, फायदा क्या है, मुन्नू को अंदर मत आने दिया कर। खैर, आए मगर उससे बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए, सुना है इसके।
1: इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई।
3: अरे ये मिठाई किसने दी?
4: राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा।
2: ये राजा भैया कौन है?
4: वही तो है जो अभी इधर से गए हैं।
2: वो तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है?
4: हाँ हाँ वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी।
3: क्या तू उसके घर गई थी?
2: तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं।
4: राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे।
2: तुम बैठी क्या क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती?
3: इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके तो नहीं रखा जा सकता।
2: तुम जवाब, ये मैं जानता हूं, ये क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती?
3: बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसी भी नहीं है। मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? अरे गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या करूं मैं भाई, मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता।
2: खैर, खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा। 7 बज गए हैं।
3: तुम जाओ देखाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
2: तुम तो महीनों से तमाशे की रेट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि मैं जो बात कहूं वो कभी ना मानूं?
3: जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा से ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे। भाई तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोचकर मैंने कहा था।
1: 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने। सड़क पर थोड़ी दूर रह गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में, हाँ उसके बगल में बैठा था मुन्नू, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने के लिए ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी,
4: बाबूजी बाबूजी, देखो वह राजा भैया आ रहे हैं। राजा भैया राजा भैया, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं।
1: रजा ने मुस्कुरा दिया मगर

0: नीच समझते हो क्या?
1: नहीं नहीं समझता हूं, तुम्हें इस बदमाश को भी मुंह लगाने नहीं चाहिए था ना। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छटा हुआ सौदा है, या अब भी कुछ शक है?

0: छोड़ देने का निश्चय किया और इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। कहो तो ये घर छोड़ दें, इन शौधों के बीच रहने में आबरू बिगड़ने का भय है।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा।
0: आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ।
1: मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? भाई मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। एक दो नहीं, लाख दो लाख शोधे हों तो क्या? कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है क्या?
0: कभी कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था, ये समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर पर पट्टी बांधे उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उनका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा,
2: सरकार सरकार, जब से आपने वो मकान छोड़ दिया जो उधर एक बार भी गया हूं, अरे उस घर को देखकर तो रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूं सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता। बस हर घड़ी आपकी ही याद आती रहती है सरकार। अरे हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? हुजूर ये मकान तो बहुत छोटा है।
1: तुम्हारे कारण तो ये मकान छोड़ना पड़ा।
2: मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई हुजूर?
1: तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ना। अब ऐसे आदमी पर आदमी को शक होता ही है।
2: अरे अरे अरे अरे अरे सरकार, उस दिन की बात, अरे उस दिन की कुछ ना पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था, साथ बिठा लिया। उनका सईस कहीं गया हुआ था। अब मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे ना निकलते थे वो। सरकार उसे शोहदा गलत कहती हैं, उससे भला आदमी तो पूरे मोहल्ले भर में नहीं है। पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, तीन रोजे रखता है, घर में बीवी बच्चे सब मौजूद हैं। अरे क्या मजाल के किसी पर गलत निगाह हो।
1: खैर होगा तुम
2: छोड़िए हुजूर, इसका माजरा ना पूछिए हुजूर, छोड़िए।
1: बताओ।
2: आपकी बुराई करते किसी को तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा,
3: मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं।
2: वो ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते।
3: अगर ऐसे नहीं थे तो पैसे देकर क्यों नहीं गए?
2: बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वो ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित्त सड़क पे गिर पड़ा। चोट तो आई हुजूर, मगर मैंने भी दुकान के सामने ही हलवाई को इतनी गालियां सुनाई कि याद करता होगा। वैसे अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर।
1: राम राम, नाहक लड़ाई की तुमने। अब कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। भाई हैं तो शहर में ही ना, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए हैं?
2: अरे हुजूर के नहीं रहा जाता मुझसे, फिर चाहे वो अपने घर का लाट साहब ही क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा मैं तो। अब वो महाजन होगा तो यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं।
1: अच्छा उस घर में अभी कोई आया कि नहीं?
2: कई आदमी देखने आए हजूर, मगर जहाँ रह चुकी है वहां अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियां तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ के बैठे हैं, बिटिया को याद करके रोया करते हैं हुजूर। वैसे आपको हम गरीबों की याद काहे को आती होगी?
1: याद क्यों नहीं आती? अरे हम आदमी नहीं है क्या? जानवर तक थान छूटने पर दो चार दिन चारा नहीं खाते। अच्छा ये तुम पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लेना, भूखे होगे ना?
2: हुजूर की दुआ से खाने की बिल्कुल तंगी नहीं है। अरे आदमी का तो दिल देखा जाता है हुजूर, पैसे की कौन बात, आपका दिया ही तो खाते हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। क्या बताएं हुजूर। अच्छा तो अब चलूंगा, बाबूजी आते होंगे, मुझे देखते ही कहेंगे ये शैतान फिर यहाँ आ पहुंचा।
1: अरे अभी उनके आने में बड़ी देर है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा ओह एक बात तो मैं भूल ही जाता था।
1: वो क्या?
2: रजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे। बातों ही बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुधी नहीं रही। कहाँ है बिटिया?
1: अरे अभी तो मदरसे से आई नहीं, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया, भेजना ही था तो दो चार आने के खिलौने भेज देते। अकेली मैम 3-4 रुपए से कम ना होगी? कुल मिलाकर तो ये 30-35 रुपए से कम खिलौने नहीं है।
2: अरे हम क्या जाने सरकार, अब मैंने तो कभी खिलौने खरीदे ही नहीं। 30-35 रुपए के होंगे तो क्या होगा, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर।
1: नहीं नहीं इनको तो लौटा ले जाओ, इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी। मैं सिर्फ ये एक मेम रखे लेती हूँ।
2: माफ करना हजूर, रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता नहीं छोड़ेंगे। बड़े की मोहब्बत ही आदमी है हुजूर, बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं।
0: सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी।
1: अरे क्या करती है, अरे क्या कर रही है? मेम ले ले, और सब ये लेकर क्या करोगी?
4: मैं तो सब लूंगी, मेम को मोटर पर बिठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, इन बर्तनों में गुड़िया के लिए खाना बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा बताओ ना।
1: कहीं से नहीं आए हैं, मैंने देखने को मंगवाए थे, तू इनमें से कोई एक ले ले।
4: मैं सब लूंगी मेरी अम्मा, सब ले लीजिए ना। कौन लाया है अम्मा?
1: मुन्नू तुम ये खिलौने ले जाओ, सिर्फ ये एक मेम रहने दो।
4: कहाँ से लाए हो मुन्नू बताओ ना, बताओ
2: अरे,
4: ना।
2: अरे बिटिया तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं।
4: राजा भैया ने भेजे? ओहो राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे।
1: अच्छा मुन्नू अब तुम जाओ, राजा भैया से कह देना कि फिर यहाँ खिलौने ना भेजें।
0: जी अच्छा। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा,
1: ला बेटी तेरे खिलौने रख दूं, बाबूजी देखेंगे ना तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि ये रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। देखो भूल कर भी उनसे ही खिलौनों की चर्चा ना करना बेटा।
4: हाँ माँ रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे।
1: और उनसे कभी मत कहना कि रजा मियाँ ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी रजा मियाँ को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे कि लड़की भिखमंगी है क्या, हाँ सबसे खिलौने मांगती फिरती है।
4: हाँ माँ रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे।
0: इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए, भौहें चढ़ी हुई थीं। आते ही बोले,
5: वो मुन्नू शैतान इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा। क्या वो यहाँ भी आया था?
1: हाँ आया तो था।
5: और तुमने आने दिया? अरे मैंने मना किया था कि उसे कभी अंदर मत आने देना।
1: आकर द्वार खटखटाने लग गया तो क्या करती?
5: उसके साथ वो शोधा भी रहा होगा।
1: उसके साथ और कोई नहीं था।
5: तुमने आज भी नहीं कहा होगा यहाँ मत आया करो?
1: मुझे तो इतना ख्याल ही नहीं रहा, और अब वो यहाँ क्या करने आएगा भला?
5: जो करने आया था वही करने फिर आए। तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने पर तुली हुई हो।
1: मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए ना? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने ऐसी कुछ बातें कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द कहे ना तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वैश्या समझ लिया है क्या?
5: मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए।
1: तो मना क्यों नहीं करते थे? मैं तुम्हें रोकती हूँ।
5: तुम क्यों नहीं मना कर देती?
1: तुम्हें कहते क्या शर्म आती है?

आवाज के आघात से पीड़ित हो उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट इस बात से लगी, वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, इतना निर्लज्ज समझते हैं। जो काम शरीर बेचने वाली भी न करेगी, उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डालें। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहां छिपा कर रखूं। वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वो किसी तरह रोक ना सके। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों ना सहेली के साथ खेल लूं।

0: संग्रह
1: सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति क्रम में सातवीं कहानी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में फार्मा, मेडिकल, मेडिकल डिवाइसेस सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले इस इंटरेक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस में आयोजित समारोह में प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के युद्ध अभियानों को याद किया। श्री सिंह ने कहा कि वायुसेना किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमेशा सतर्क, प्रतिबद्ध और तैयार है। किशोर कुमार की जन्मस्थली खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को अलंकरण समारोह एवं गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को दिया जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। कुल 1000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 15 से 29 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को पात्र लोक सेवकों को समय पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय सीमा में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। और हिंदी और मराठी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का आज दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है सखियो आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। नमस्कार। नभ स्पृशाम दीप्तम, भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया ये वाक्य है। जी हाँ सखियो, यह हमारी भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। हर साल 8 अक्टूबर को हम ये दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना हुई थी। इस वर्ष वायुसेना दिवस की हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित की जा रही है, जबकि पहली बार वाराणसी के नमोघाट पर 25 अक्टूबर को विशेष भव्य हवाई करतब और एयर डिस्प्ले दिखाया जाएगा। सखियो, इस वर्ष की थीम है भारतीय वायुसेना, अजय, त्रुटिहीन और सटीक। हमें अपनी भारतीय वायुसेना पर गर्व है। सखियो, विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक दुनिया भर में मनाया जाने वाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। इस वर्ष की थीम है रॉकेट क्रांति, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण में हो रहे तीव्र परिवर्तनों और कम खर्च में अंतरिक्ष तक बढ़ती पहुंच पर केंद्रित है। और अब बात करते हैं विश्व दृष्टि दिवस की, जो कि आज है। ये एक वैश्विक आयोजन है सखी, और इसका मुख्य उद्देश्य अंधत्व, दृष्टिहीनता और नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही दुनिया भर में सुलभ, उपलब्ध और किफायती नेत्र देखभाल पर जोर देना भी है। इस वर्ष की थीम है अपनी आंखों से प्यार करें, और हमें पता है सखियों कि आप करती हैं। और अब बात करते हैं भारत सरकार की योजना की। जी हाँ, युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। जी हाँ, ये भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है। सखियों, ये योजना देश में नए विचारों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका संचालन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करता है। पात्रता की बात करें तो सखियो, प्राइवेट लिमिटेड LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का होना आवश्यक है। आयु सीमा कंपनी गठन से 10 वर्ष तक। टर्नओवर सखियो किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹200 करोड़ से कम होना चाहिए। साथ ही उत्पाद या सेवा नया और तकनीक रूप से उन्नत होना चाहिए।

अब बात करते हैं बेनिफिट यानी लाभ की। तो सखियो, शुरुआती 3 वर्षों तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। पेटेंट आवेदन शुल्क में 80% तक की छूट दी जाएगी। सखियो, सिड फंड और सिडबी द्वारा फंडिंग सहायता प्रदान भी की जाएगी। नियमों का सरल पालन और स्वप्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाता है। सखियो, आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाएं, रजिस्टर पर क्लिक करके प्रोफाइल बनाएं, DPIIT मान्यता के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। बस इस तरह से इस योजना का आप लाभ उठाएं और जैसा कि हमने कहा था, अपनी आंखों से प्यार करें। तो आइए सुनते हैं फिल्म किंग अंकल का ये युगल गीत नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में।

0: और आइए सखियों, इस खूबसूरत नगमे के बाद शामिल होते हैं भेंट वार्ता में। विषय है अकेली महिला कैसे सामना करे व्यंग और तानों का। विशेषज्ञ हैं शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक श्रीमती रूपाली त्रिवेदी। सखियों, शायद ही ऐसा कोई होगा जिस पर व्यंग नहीं हुआ हो, क्योंकि ये आम बात है जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि बचपन से ही हो जाती है। उस वक्त हम कहते हैं कि अरे ये तो चिढ़ा रही थी, बेकार ही तुम गुस्सा हो गई। यही बात धीरे धीरे बढ़कर व्यंग का रूप ले लेती है, जो कभी कभी काफी घातक भी साबित हो जाती है। व्यंग करना, ताना मारना कोई अच्छी बात नहीं, अब तो ये कानून अपराध है। जरा सोचिए, एक अकेली महिला, फिर वो चाहे युवती हो या विधवा हो या फिर साधारण रूप रंग की, यदि वो व्यंग का शिकार होती है तो उसे कैसे निपटना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? जवाब इस सवाल के बहुत से हो सकते हैं, पर आज हम जानेंगे शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक श्रीमती रूपाली त्रिवेदी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्कार रूपाली जी।
1: नमस्कार,
0: स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में
1: जी।
0: रूपाली जी, हमारा जो आज का विषय है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर परिस्थितिवश हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो है वो अकेली रह रही है, अकेले उन्हें कई स्थानों पर आना जाना भी पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार उन्हें व्यंग का सामना करना पड़ता है, उन पे ताले कसे जाते हैं, तो समाज

0: समाज में लड़कियों या महिलाओं पर कसे जाने वाले व्यंग को आप किस तरह से देखती हैं? आपका क्या नजरिया है, क्योंकि आप एक शिक्षाविद तो है ही, साथ में आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विषय है ये, जिसमें निश्चित रूप से महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, और स्पेशली अकेली महिला, कई पड़ाव से उन्हें गुजरना पड़ता है, जैसे घर बाहर दोनों ही जगह उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। देखिए, घर तो जिसे समाज सर्वोत्तम सुरक्षित जगह मानते हैं, वहां पर भी जैसे अगर लड़की व्यसक होती है तो लड़की की शादी, और यदि शादी हो गई है तो बच्चों होने की जल्दी, और बच्चों में भी अगर लड़का होने की जिद, ऑफिस में जाती है महिलाएं, ऑफिस में जाने के बाद वहां पर कैसे जाने वाले व्यंग, रोड पे चलती हुई लड़कियां, उनको देखना, घूरना, और इस तरह से हमारा समाज अस्वस्थ हो रहा है।
0: जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कई ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है जहां पर उसे तानों का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
0: यदि इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए हम बात करें उस महिला की, तो यहां पर अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, या फिर वे इन परिस्थितियों के लिए किस तरह से अपनी जो बच्चियां हैं छोटी, उनको तैयार करें कि अगर ऐसी स्थिति आती कि जब उन्हें अकेले दुनिया का सामना करना है तब वो क्या करें। यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे कि किस तरह का पालन पोषण हो कि ऐसी स्थितियों से वो जो है बड़ी आसानी से निपट सके।
1: जी, आज की महिला या लड़की इस तरह की स्थिति से गुजर रही है तो बचपन से ही अभिभावकों को दो गुण विकसित करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जैसे पहला साहस और दूसरा आत्मविश्वास। ये ऐसे मानवीय गुण हैं जिन्हें गढ़ा जा सकता है। बचपन से ही बच्चियों को अपना काम स्वयं करने दें, उन्हें बाहर की दुनिया देखने दें, तुम लड़की हो यह नहीं कर सकती हो, इस तरह के वाक्य बोलने से बचें। तो हम समझते हैं कि बच्चियों को शुरू से ही सही गलत का समझ अपने आप ही समाज दे देता है, और वह साहसी बनती हैं और अपने आप उनमें आत्मविश्वास जैसा अनमोल बीज पनपने लगता है।
0: बहुत ही अच्छी आपने बात ये कही, और हम सोचते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रूपाली जी, फप्तियां कसना या व्यंग करना, क्या ये स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है? क्या आप इसे, ऐसा नहीं लगता कि ये एक अस्वस्थ मानसिकता का एग्जाम्पल है?
1: जी जी, बिल्कुल, मेरी राय में इस तरह के व्यक्ति को हम मानसिक तौर पर अस्वस्थ की श्रेणी में ही रखेंगे, क्योंकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कारण शारीरिक तथा मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो मैं महिलाओं को कहूंगी कि यदि इस तरह की कोई फप्ती आप पे कस रहा है तो मान के चलें कि वो अस्वस्थ है, तो उसके साथ और ज्यादा हम्बल होइए, आप और ज्यादा उसकी तरफ मानवता की दृष्टि से देखें, ना कि उससे चिड़चिड़ाहट या झुंझलाहट रखें आप लोग।
0: जी जी जी, आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति में विचलित होने की आवश्यकता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने।
0: रूपाली जी, व्यंग करना या फप्तियां कसना या ताना मारना एक आम समस्या है, और इससे शायद ही कोई अछूता हो, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। आप क्या सोचती हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, परिवार, समाज या स्वयं महिला ही?
1: जी, जिस तरह का माहौल बन रहा है इसके लिए बच्चों की परवरिश और शिक्षा भी बहुत कई हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ही जगह पर हम लोग व्यंग और फप्तियां को लेकर कोई बात नहीं करता है। यहाँ पर कुछ परिवारों में तो हमने इस तरह से देखा है कि बच्चों एक दूसरे को चढ़ाते हैं या परेशान करते हैं तो वो हंसी टिटोली का विषय बन जाता है, और उसे वहाँ पर रोका नहीं जाता है। बच्चों को लगता है कि शायद ये कोई अच्छी बात है जिसे बड़े होकर भी वो पनप लेते हैं। और जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें तो मॉरल एजुकेशन जो आजकल स्कूल में कंपलसरी हो गया है, उस मॉरल एजुकेशन में भी हम देखें कि चोरी, झूठ को ज्यादा तुल देते हुए इन पे कहानियां रची जाती हैं। परंतु यदि इस विषय को भी, जैसे व्यंग और फप्तियों को भी, अगर बच्चों की एजुकेशन में डाला जाए, एक छोटी सी कहानी बनाई जाए कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके ऊपर व्यंग करा गया है, फप्ती कसी गई है, तो उसके परिणाम स्वरूप उस बच्चे को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है और वो क्या क्या समाज में उसके आगे जाके ग्रूमिंग इस तरह से हुई है कि वो आगे जाके फेस नहीं कर पा रहा है। तीसरी बात है, आजकल चल रहे टीवी सीरियल, फिल्म, ये सभी चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार मुझे लगती हैं।
0: जी, ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसमें इस विषय को शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों में बचपन से ही ये जो गुण है वो विकसित हो कि हमें किसी को ताना नहीं देना है, फप्ती नहीं कसनी है। ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर साझा की। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस तरह के व्यंग बाणों के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए?
1: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह के व्यंग बाणों के दुष्परिणाम शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इससे महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है, जिसे हम व्यंग बाणों या फप्तियों की शिकार महिलाओं के व्यवहार में आत्मविश्वास की कमी, कुंठा, आत्मग्लानी के तौर पर देखते हैं। यहाँ तक कि कई बार व्यंग और फप्तियों से तंग आकर महिलाएं आत्महत्या तक के कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए हमें महिलाओं को मानसिक तौर पर सशक्त करना होगा, और इसके लिए अच्छा आहार और अच्छी शिक्षा भी उपयोगी है।
0: अच्छा, तो आप ये मानती हैं कि मानसिक तौर पर जो है वो महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता?
1: निश्चित रूप से।
0: जी, तो जब वो मानसिक रूप से सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको शारीरिक बल भी मिलेगा। अब आप ये बताइए कि लगातार होने

0: ऐसी घटनाओं से कैसे निपटे जो अकेली महिला है।
1: व्यंग बाण और फप्तियों से होता क्या है कि जो महिला ऑलरेडी अस्वस्थ है, ऐसी महिलाओं पे मानसिक चीजें ज्यादा हावी हो जाती हैं, और इस तरह से निपटने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपना ध्यान कहीं और लगाएं। यदि हमें लगातार कहा जा रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो हमें उन चीजों से अपना इंटरेस्ट और कहीं डेवलप करना है। हमें किताबें पढ़नी है, मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं आजकल, बहुत ही अच्छी तरह की चीजें हैं जिसको आप पढ़ के अपने आप को आत्मविश्वास आप में जो कमी हो गई है उस चीज को आप बढ़ा सकते हैं।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ये जो घटनाएं हैं इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें
1: बिल्कुल,
0: और उस पे बहुत ज्यादा आप जो है
1: जी
0: मनन चिंतन न करें। आपके अंदर जो आपकी जो हॉबीज हैं उस पे आप जो फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और समय आपके अनुकूल हो जाएगा।
1: जी हाँ, जहां तक लगातार अगर ये चीजें रिपीट हो रही हैं और हमें कहा गया है कि इसको निपटना है, तो देखिए अगर लगातार इस तरह की कोई स्थिति निर्मित हो रही है तो आप नजरअंदाज न करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक ही बस स्टॉप से चढ़ती हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रही हैं, तब आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और इसके लिए आप सबसे पहला कदम तो ये उठाएं कि आप परिचितों से चर्चा करें। फिर भी नहीं मानता है और फिर भी अगर कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती है तो हमारे पास कई तरह के हेल्पलाइन नंबर हैं, आप उस पर बात करें। वी केयर फॉर यू है, फिर देन आप पुलिस की मदद ले लें। और आजकल तो हर महिला के हाथ में क्योंकि मोबाइल है तो उस तरह की ऐप डाउनलोड कर लें जिससे आप निश्चित ही ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें और उनको वहीं पे सबक सिखाएं।
0: जी जी, खामोशी के साथ उसको सहन नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि ये मामला आगे बढ़ रहा है, कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। तो रूपाली जी, बहुत ही अच्छी आपने विषय संबंधित हमें बातें समझाई बताई, निश्चित रूप से हमारी सखियों का मार्गदर्शन होगा। अब हम आपसे चलते चलते इतना पूछना चाहेंगे कि ये खास करके जो हमारी जो सखियां अकेली रह रही हैं, अकेलेपन से जूझ रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं और आते जाते उनको इस तरह के तानों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बताएं कि वो कैसे इसको बहुत ही सरल तरीके से लें, आप क्या सुझाव देंगी?
1: देखिए मैं यही कहूंगी कि अकेली महिला है अगर वो इन सब चीजों का सामना कर रही हैं, तो हमें हमारा मानसिक स्तर इतना अच्छा करना है। वो अच्छा करने की खुराक सिर्फ यही है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल बातें करें और अपने आप से प्यार करें। हम कहते हैं लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करेंगे तब शायद इस तरह की चीजें नहीं होंगी, आप दुनिया को निग्लेक्ट करें, क्योंकि तरह तरह के केसेस ऐसे आते हैं कि आज इसका डिवोर्स हो गया है, आज इसके बच्चे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेली महिला हैं, बहुत सारी दुनिया में ऐसी बातें होती हैं। अपने आप को अकेला न समझें और अपने आप से प्यार करें और अपनी हॉबीज डेवलप करें और उनसे अपना समय व्यतीत करें, अपना ध्यान डाइवर्ट करें और अपने आप को एक मजबूत महिला के रूप में प्रस्तुत करें। देखिए कुछ पंक्तियों के थ्रू मैं इसको कहना चाहूंगी। नारी है तू शक्ति है, डरना तेरी फितरत नहीं, नहीं रचना तू उपहास की, व्यंग की नजर तंग की, साहस भरा तुझ में, पहचान तू सृष्टि गर्भ में, पले तेरे है तेरा स्थान धरा पर, तुझ बिन न एक पल जग चले।
0: बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं और इसमें बहुत गहरा अर्थ हम छुपा कह सकते हैं। आपने बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई हमारी सखियों को रूपाली जी, और निश्चित रूप से जो महिलाएं अकेली हैं उनमें आत्मविश्वास जगा होगा सुनकर। और क्या कहना चाहेंगी?
1: बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा विषय लिया है और मैं चाहूंगी कि अगर मेरे माध्यम से अगर आप लोग को कोई सीख मिली है तो कृपया उसे आत्मसात करें और बिंदास होके जिए, यही कह सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो आत्मविश्वास जो है सखियों वो कुंजी है जो अकेलेपन से जूझने का हमको हौसला देती है। रूपाली जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, अभी हमने सुनी ये प्रेरक भेंट वार्ता और आइए अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा फिल्म खूबसूरत से।

सखियों, हमें पता है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती हैं, तो चलिए रूपलावण में बात करते हैं हम त्वचा की देखभाल की। जी हाँ सखियों, बढ़ती उम्र के साथ त्वचा की सही देखभाल के लिए रोजाना हल्के क्लींजर से चेहरा धोना, नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही विटामिन सी युक्त चीज़ें या स्किन केयर उत्पाद शामिल करें जो फ्री रेडिकल से त्वचा की रक्षा करें। और हाँ, पानी का सेवन प्रचुर मात्रा में जरूर करें ताकि त्वचा डिहाइड्रेटेड न हो। सखियों, त्वचा को रगड़े नहीं, सौम्य क्लींजर का उपयोग करें जो नेचुरल नमी को न छीने। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो आपका रूप खिला खिला रहेगा। और फैमिली फिटनेस में हम बात करते हैं सखियों कि त्यौहार और छुट्टियों में आप कैसे फिट रह सकती हैं, क्योंकि त्यौहार और छुट्टियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और ऐसे में फिटनेस बनाए रखना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, अगर थोड़ा सा एडवांस प्लान कर लें। अक्सर इन दिनों रूटीन बदल जाता है, मिठाइयाँ सामने होती हैं और वर्कआउट छूट जाता है। अपनी फिटनेस को ट्रैक पर रखने के लिए कुछ आसान और व्यावहारिक तरीकों को अपनाया जा सकता है। जी हाँ सखियों, त्योहारों पर सब कुछ खाएं लेकिन कम मात्रा में। अगर आपकी मनपसंद मिठाई सामने है ना, तो उसे पूरा खाने के बजाय सिर्फ एक या दो बाइट लें। हैवी डिनर से पहले सलाद, सूप या प्रोटीन से भरपूर चीजें खाएं। इससे आपका पेट जल्दी भरेगा और अनहेल्दी खाने से आप बच जाएंगे। घर पर बनी मिठाइयों में चीनी की जगह गुड़, खजूर का उपयोग करें। तली हुई चीजों के बजाय बैग्ड या एयर फ्राई हुई की हुई चीजें चुनें। त्योहारों की भाग दौड़ में सखियों अक्सर पानी पीना हम भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। पानी भरपूर पिएं, क्योंकि कम पानी पीने से भूख ज़्यादा लगती है, जिसे अक्सर लोग मीठा खाने की क्रेविंग समझ लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस या फ्रूट से बचें, इन्हें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। इसके बजाय छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी लें। वर्कआउट के लिए समय ज़रूर निकालें, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट ज़रूर करें। एक्टिव रहें, जिम जाना मुमकिन नहीं है तो वॉक करें। घर के कामों, त्योहारों की तैयारी स्वयं करें। विशेष बात सखियों, नींद से समझौता बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें सखियों, फिटनेस एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, एक दो दिन की छुट्टी से आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। चलिए फिलहाल अगर अभी फूट बन रहा है तो करिए इस मधुर गीत के साथ। जिया फिल्म शामिल निमार से ये गीत लिया है उषा उथुप के स्वर।

सखियों, ऐसे ही गीत संगीत के साथ अगर आप घर पर एक्सरसाइज करेंगी तो फिट रहेंगी, लेकिन इसके साथ सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। जी हाँ सखियों, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता एक महत्वपूर्ण विषय है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों जैसे बस, ट्रेन, बाजार, पार्क और सड़कों को सुरक्षित बनाना और उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक करना समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई हेल्पलाइन और कानून बनाए हैं। सखियों, किसी भी आपातकालीन स्थिति या संकट में महिलाएं 1091 और 181 पर कॉल कर सकती हैं। अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर 112, जिस पर पुलिस, आग और चिकित्सा सहायता के लिए तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह सखियों, शी टीम्स और एंटी रोमियो स्क्वाड कई राज्यों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थानों पर मंचलों और छेड़छाड़ करने वालों पर नजर रखते हैं। विशेष बात सखियों, किसी भी आपात स्थिति में महिला किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकती है। जी हाँ, FIR आप दर्ज करा सकती हैं, चाहे घटना उस क्षेत्र में हुई हो या नहीं। तकनीक सहायता के माध्यम से 112 इंडिया ऐप का यूज करें। ये एक आधिकारिक ऐप है जिसमें एक पैनिक बटन होता है जो तुरंत स्थानीय पुलिस और परिजनों को आपकी लोकेशन भेजता है। अपने स्मार्टफोन में सखियों इन बिल्ट SOS फीचर को एक्टिव रखें, जिससे पावर बटन को 3 या 4-5 बार दबाने पर वो तुरंत इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है। साथ ही यात्रा के दौरान आसपास के माहौल के प्रति भी आप सतर्क रहें। बस इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी। और देखिए, समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। अब दुर्गेश नंदिनी को दें अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे सुधा मिश्रा के गाए लोकगीत।

सुधा मिश्रा के गाए लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए स्वास्तिका सोनी की गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है।

0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
2: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत है कलयुग फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज, आसिम रजा का गीत और रूहेलियात फैजल रफी का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 5G कनेक्टिविटी अब देश के हर जिले तक पहुंच चुकी है और भारत में 5G के लिए 5,50,000 से ज्यादा बेस स्टेशन काम कर रहे हैं।
1: 2022 में इसी मंथ से हमने देश में 5G की शुरुआत की। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में है जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।
0: वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हुई है और मोबाइल फोन सुशासन का भी अहम माध्यम बना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वर्ष 2014 में 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये थी, जो अब घटकर करीब 8 रुपये रह गई है। 4 दिवसीय इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी, 500 से ज्यादा साझेदार और प्रदर्शक तथा 600 स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले इस संवाद में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन और धार के पीएम मित्र पार्क तथा उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की जानकारी उद्योगपतियों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे और उनकी निवेश व विस्तार योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के दूसरे दिन यानी आज पर्यटन के नए क्षेत्रों और उनसे रोजगार बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। दोपहर के सत्र में एडवेंचर टूरिज्म और MICE आधारित इवेंट इकोनॉमी को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा होगी। वन्यजीव पर्यटन को स्थानीय गांवों, युवाओं, होमस्टे, गाइड, हस्तशिल्प और स्थानीय

कारोबार से जोड़ने पर भी जोर रहेगा। ट्रैवल मार्ट में B2B बैठकों के जरिए होटल, रिसॉर्ट, टूर ऑपरेटर और निवेशकों के बीच कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। भोपाल में SIR के दौरान सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नामों की जांच के लिए BLO मैदान में काम कर रहे हैं। आज और कल शहर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर लोग अपने नाम की दोबारा जांच करा सकते हैं। जांच में पात्र पाए जाने पर स्थायी रूप से बाहर हुए या फिर पते पर नहीं मिले मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए एडवांस में फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर कल मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। भोपाल के रविन्द्र भवन में हुए मुख्य कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने अशोका गार्डन में 50 लाख रुपए की लागत से सेवा ज्योति चौक बनाने की घोषणा की। प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख चौराहों पर सेवा ज्योति की प्रतिमा लगाने की घोषणा भी की गई, जिसे प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवाकाल और विकसित भारत 2047 के संकल्प का प्रतीक बताया गया। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की स्मृति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को अभिनय के लिए दिया जाएगा। 13 अक्टूबर को सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले और साथी कलाकार गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। कुल 1000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 15 से 29 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में 19 अक्टूबर को प्रसिद्ध प्रदेश स्तरीय पंजाबी दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में किसान पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए 30 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में चतुर्वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दीक्षारंभ कार्यक्रम का कल समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों

0: को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेत्र निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा गया है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
6: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गई और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
7: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
8: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
9: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
6: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
10: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
11: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
12: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
11: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी।

0: वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है बिरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हादिया, अस्मा, सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफ़ा, अफिया, राउफ और शहीद भाई, गांधीबाग ककोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, श्राहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। आप सबने सुनना चाहा है मर्डर 3 का ये नगमा शफकत अमानत अली की आवाज़ में, सईद कादरी का गीत और प्रीतम का संगीत।

तुम बिन टू। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा अंकित तिवारी की आवाज़ में। शकील आजमी के लिखे गीत की धुन बनाई है मनोज मुंतशिर ने। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, धामड़ी मानोरा जिला वाशिम से तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे और प्रज्वल डेरे, साथ ही अनुत्तर डेरे, नेहरू वार्ड बस स्टैंड यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीत मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, महावीर संधु, गुरचरण गरोबर, रमेश मिगलानी। आप सबने सुनना चाहा है राज फिल्म का ये नगमा, अलका याग्निक का गाया हुआ। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अक्टूबर को किशोर कुमार की स्मृति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह और गीत संगीत संध्या आयोजित की जाएगी। और मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम के साफ होने और की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, 8:35 और रात 9:30। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। 7:30 हम आपको सुनवाएंगे सतीश कुमार से ली गई भेंटवार्ता, विषय है आधुनिक तकनीक से कपास उत्पादन, साथ ही सुनिएगा लोकगीत। और डॉक्टर रतनदीप सोनी की लघु वार्ता रवि फसलों की तैयारी, विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश, रात 8:00। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात 10:00 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन, राग होगा हमीर। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर अब हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ। तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है आपका दोस्त आपके साथ मयंक शर्मा, लेकर आ गया हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी कार्यक्रम लेकर। अगले कुछ समय तक आपके कानों में घुलने वाला है वो संगीत जो सीधे आपकी लाइफस्टाइल, आपके क्रश को और आपके दिन के कार्यक्रम को मैच करता है। तो वॉल्यूम बढ़ाओ और सुनते हैं ये कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, यह गाना सिर्फ एक ट्रेक नहीं, हम युवाओं का एंथम है। जब भी लाइफ में लगे कि पढ़ाई या करियर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो बस हेडफोन उठाओ, लगाओ और संगीत में खो जाओ। संगीत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो हमें, हमारे मन को, हमारे शरीर को एकदम फ्रेश कर देता है। और जब भी किसी मन में चीज़ में मन नहीं लगता है, या हम किसी काम को करते हुए बोर हो जाते हैं, तो हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, और ख़ासकर युवाओं को, वो है संगीत। संगीत हमें हमारे काम के प्रेशर से, उसके तनाव से कहीं ना कहीं दूर कर देता है और हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है। आइए, अगला गाना खास आपके लिए इस गीत के साथ।

दोस्तों, संगीत एक सुकून है। देखा ना, ये गाना सुनते ही मन करता है ना कि जैसे बैग उठाओ और कहीं निकल लो। कहने का मतलब है कि कहीं ट्रिप पर चले जाएं या दोस्तों के साथ कहीं जाएं। दोस्त हो, परिवार हो या फिर कोई इन्जॉयमेंट का पल, संगीत हमारे साथ हमेशा रहता है। और संगीत क्यों ना हो, जब संगीत रहता है तो खुशियाँ होती हैं। हमें हमारे साथ बिताए गए पलों की यादें हमें जोड़ता है। और कहते हैं ना, वो ट्रेवल करना किसे पसंद नहीं, और अगर ट्रेवलिंग है तो उसके साथ संगीत का होना तो बनता ही है। चाहिए आगे सुनते हैं अगला गीत, जो कि आपको संगीत में और जोड़ेगा।

संगीत की बीट कौन सी भी हो, पर हमारे पैर थिरकने से रोक नहीं सकते। चलिए, वैसे डांस तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा दिल की गहराइयों में उतरते हैं। वो एहसास जो पहली मोहब्बत को खो जाने पर या किसी पुरानी याद के आने पर होता है। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों, संगीत या ये कहें कि कोई गीत या कोई म्यूज़िक या कोई चीज़ जिसको हम सुनकर या तो हम खो जाते हैं या कोई चीज़ भूल जाते हैं, वही हमारा अपना पसंदीदा संगीत होता है या गीत होता है। कई बार गाने सुनते सुनते दिल में कहते हैं कि कुछ इमेज बनती है, कुछ कहानियाँ बनती हैं, कुछ सोचने लगते हैं उस गीत को, उस संगीत को में हम, या कह सकते हैं हम अपना, कहते हैं कि ड्रामा सा सीन कुछ शुरू होने लग जाता है। तो चलिए, पर गाना बैकग्राउंड में लगाते हैं और टेक कर दीजिए, चलिए रोमांस के मूड को थोड़ा सा और बदलते हुए सुनते हैं ये अगला गीत।

बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। सच में सचेत टंडन की आवाज़ सीधे दिल को छूती है। और दोस्तों कहते हैं ना कि टूटे दिल को जोड़ने का काम भी संगीत ही करता है। दोस्तों पर घबराइए मत, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जो कि इसी हमारे मनोरंजन या संगीत को प्रदर्शित करता है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, मानव जीवन में संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की हर भावना, उल्लास और दुख की स्थिति में साया बनकर साथ रहता है। संगीत कह सकते हैं कि केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की उपभाषा और मानसिक शांति का मुख्य आधार भी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह अगला गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीत की। सुख हो या दुख, उत्सव हो या पूजा अर्चना, हर अवसर पर अपनी उमंग या वेदना को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम संगीत ही है। विवाह, तीज त्यौहार और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में संगीत लोगों को आपस में जोड़ता है और अकेलेपन की भावना को दूर करता है। तो आइए आनंद लेते हैं अगली ये गीत का।

दोस्तों, संगीत कोई सा भी हो, फिल्म संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, सूफी संगीत हो, या कोई उद्देश्य उसका मनोरंजन के साथ हमें जोड़े रखना है और हमारे अकेलेपन को दूर करना है, हमारे तनाव को घटाना है, तो संगीत सुनते रहिए। और कार्यक्रम का समय भी अब पूरा हो रहा है, तो हमें अनुमति दीजिए। आपके दोस्त मयंक शर्मा को नमस्कार।

नदिया के पार। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ में। रविंद्र जैन का संगीत है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितंबर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
3: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल,
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
3: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
3: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
3: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: जी, तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
2: जी।
3: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और

0: साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
1: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्धभूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
0: जी तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
0: जी,
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
0: जी,
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
0: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
0: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
1: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
0: और इसे प्रदान कौन करता है?
1: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं, बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
0: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
1: जय हिंद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
4: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
2: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना, जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बसंती बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू भी

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो।

0: ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
1: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
0: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी।
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो वो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: आणि चल ना जल्दी कर ना, जल्दी जल्दी
1: कर बड़ा। अरे कहाँ जा रही हो बहनों, क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ?
1: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
2: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
0: चलो चलो
3: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
4: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्षद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब गुरुमित सिंह दंग के स्वर में सुनिए सगम संगीत। प्रस्तुत है ये पहली रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल मालवीय के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

हजार करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवेन्यू

अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में

सुनेंगे विदुषी श्रुति साडुलीकर का गाया राग नंद। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम। अब आपको कल के कार्यक्रम की भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 पर। चिंतन होगा कल सुबह 6:30 पर। विषय होगा धैर्य का धारण। आलेख सौरभ गुप्ता का और वाचक स्वर पूजा ठाकुर का। खेती की बातें में कल मिनट पर विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाएगी। श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे कल सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा प्रसारित होगा कल सुबह 7:20 पर। प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की होगी। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल हम लेकर आएंगे कल सुबह 7:35 पर। सुबह 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आपका पत्र। प्रस्तुतकर्ता होंगे सिद्धार्थ भूषण। लोक संगीत में सुबह 9:00 आप सुनेंगे मानसिंह भोंदिया और साथियों के गाए लोकगीत। और ताहिरा सैयद के स्वर में सुगम संगीत सुनेगा सुबह 9:15 पर। कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे पंडित ब्रजमोहन बमराले का गाया राग गुजरी तोड़ी। जिले की चिट्ठी कल सुबह 10:00 हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन कल सुबह 10:05 पर प्रसारित किया जाएगा। आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे भोपाल केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने रिले होगा कल सुबह 11:00। इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे सुबह 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और दिन में 2:58 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। आकाशवाणी इंदौर से महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:00। दिन में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत और सुगम संगीत होगा दिन में 1:45 पर। आकाशवाणी इंदौर से सांध्यकालीन सभा का आगाज होगा ठीक शाम 5:00 युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी के साथ। और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे कल शाम 6:00। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी इंदौर है मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि पार्टी को हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ने के बजाय अपने प्रदर्शन और संगठन पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी चुनाव प्रक्रिया के तहत कांग्रेस को केरल और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला, इसलिए हार और जीत में अलग अलग रवैया नहीं होना चाहिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपने कमजोर होते जनाधार, नेतृत्व और संगठन की स्थिति पर विचार करना चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ टीम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि माय भारत के स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स टीबी उन्मूलन अभियान में घर घर स्क्रीनिंग और जागरूकता के प्रसार में मदद करेंगे। प्रदेश में अब तक सघन स्क्रीनिंग से 1,12,000 टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों, निक्षय मित्रों और बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के दूसरे दिन पर्यटन के नए क्षेत्रों और रोजगार बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस सत्र में एडवेंचर टूरिज्म, MICE आधारित इवेंट इकोनॉमी और वन्यजीव पर्यटन को स्थानीय गांवों, युवाओं, होमस्टे, गाइड व हस्तशिल्प से जोड़ने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि पर्यटन की सफलता सिर्फ पर्यटकों की संख्या से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों और प्रकृति को होने वाले फायदों से तय होनी चाहिए। सेवा संकल्प अभियान के तहत बालाघाट स्थित कमला नेहरू महिला मंडल में विकसित भारत संकल्प सभा तथा सिवनी मालवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों की सहायता के लिए खंडवा में सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम तथा गुना के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण वितरित किए गए। वहीं आगामी 12 अक्टूबर को नीमच के होटल सनराइज ग्रैंड में यूथ एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में PNG सप्लाई शुरू होने के बाद ही संबंधित उपभोक्ताओं की LPG सप्लाई बंद करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। जिले की 4 सोसाइटियों में PNG सुविधा शुरू होने के बाद उन्हें LPG फ्री घोषित किया गया है। वहीं PNG वाले क्षेत्रों में LPG बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को 90 दिन के नोटिस देने का

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

ये पसंदीदा कार्यक्रम खेती गृहस्थी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयंक शर्मा। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वो है हमारी मिट्टी। अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी तो फसलें लहलहाएंगी। लेकिन आजकल ज़्यादा रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारी धरती माँ की सेहत कुछ नासाज चल रही है। तो मिट्टी की सेहत को कैसे सुधारें, बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर आपको लगे कि बराबर खाद पानी देने के बाद भी पैदावार घट रही है, पानी लगाने के बाद मिट्टी बहुत जल्दी सख्त हो जाती है, ना बंद हो गए हैं, तो समझ जाइए कि मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जैसे हम बीमार होने पर खून की जांच कराते हैं, वैसे ही फसल बोने से पूर्व कराएं। इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और हमें कितनी खाद डालनी है। बिना जांच डीएपी डालना मिट्टी को बंजर बनाने जैसा है। हर साल खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह की तैयार गोबर खाद या केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट लें। फसल चक्र अपनाएं, यानी लगातार एक ही फसल जैसे साल दर साल सिर्फ धान गेहूं न उगाएं, बीच में दलहनी फसलें जैसे मूंग उड़द या चना जरूर लगाएं। दालों की जड़ें हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। खाद का इस्तेमाल हमेशा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिश के अनुसार करें। बायोफर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम एजेटोबैक्टर या पीएसबी जैसे इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ये मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्वों को फसलों के लिए सुलभ बनाते हैं। तो किसान भाइयों, इस जानकारी के साथ मार का गाया ये निमाड़ी लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम
2: है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी किसान भैया बहन हरो जेठे सियाने और बड़े बुजुर्ग खूब स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें अपनी रानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम जय सीताराम भैया पहुंचे आपसे का हाल चाल है। देखो हम फिर आ गए आपके लाने आपको अपनो कार्यक्रम किसान वाणी लेके और तबियत पानी तो सब बढ़िया है ना और बाल गोपाल सब नौने हैं। भैया हम आप की सबकी मंगल कामना सोई करत हैं कि आप सब जने खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। भैया हरो देखो अब पितरापन के जे हैं बिल्कुल और माता रानी की आवक की तैयारी जो है वो जोर शोर से चलन लगी है। गांव गांव में पंडाल सजाए जा रहे हैं घर द्वारों की सफाई सजावट जो चल रही है तो उन्हें दो ही टाइम के न्योता पानी भी बिल्कुल चल रहे हैं। तो भैया हरो देखो कि ऐसे समय पे अपने स्वास्थ्य को ध्यान धर आज किसान वाणी कार्यक्रम में अपन खूब सारी बदखाव सोई कर हैं और अपन और लोकगीत भी सुन है। तो भैया हरो एक बहुत ही जरूरी आप और उनके साझा करने हथी जानकारी की भैया हरो आज है विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाओ जात है और भगवान ने अपन सबके सबसे अनमोल है वह हमारी आंखें। विश्व दृष्टि दिवस मनावे को जैया मकसद है कि अपनी आंखों को दृष्टि के लाने हमें जागरूक रहने हैं समय समय पे आंखों की जांच कराने हैं स्वस्थ रहने हैं और भैया हरो अपन के अपनी आंखों को पूरो देखभाल सुई करन है। अपन जो चीज देखा थे कि अपने आसपास की दुनिया अगर देखने हैं पढ़ने हैं सीखने हैं तो हमें तो अपनी आंखों पे तो हमें निर्भर रहने पड़ा था। तो भैया हरो अगर आप और उनके कोई भी समस्या होए संबंधित तो तुरंत में हमें क्या करने चाहिए जाँच कराने चाहिए और अपने मन से कोई भी दवाई नहीं डालने चाहिए बिल्कुल चिकित्सक की सलाह से ही पूरी काम करने चाहिए। मोबाइल फोन कंप्यूटर जो दूसरे डिजिटल उपकरण है वे हमारी जिंदगी को हिस्सा बन गए हैं। लंबे समय तक अपन स्क्रीन में देखा रहते हैं जैसे कहो सूखोपन और धुंधला दिखाई देवे वाली समस्या हो जाते हैं। तो भैया हरो स्क्रीन देखा समय बीच बीच में आंखों को आराम जरूर दें पर्याप्त रोशनी में पढ़ें और मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से हमके थोड़ी दूरी सुई बनाने चाहिए। तो जरूरी ये है कि भैया हरो अपन आंखों को अच्छे से ध्यान रख लें पौष्टिक आहार

हरी सब्जी, मौसमी फल और पोषक भोजन अपन के लाने बहुत जरूरी होत है। भैया हरो, आज हम एक ऐसी पहल और आधुनिक तकनीक की भी और बात करबो जा रहे हैं जे के किसानन को जानबो बहुत जरूरी है। खेती किसानी आसान, बेहतर और ज्यादा लाभकारी बनत जा रही है। और देखो, हम भी भारत अपनो कृषि प्रधान देश का हाथ है। हमारी खेती किसानी पूरी जो है वो किसान के मेहनत पे टिकी है। किसान अन्य और उनमें मौसमी बीज, खाद, कीटनाशक और मंडी भाव, सरकारी योजना और नई कृषि तकनीक से जुड़ी उनकी जानकारी की भी जरूरत पड़ा है। अब सोचो भैया, अगर सही जानकारी सही समय पे मिल जाए तो किसान कई अपने नुकसान से बच सकत है। ऐसे समय पे डिजिटल तकनीक किसानन की बहुत ही काम आत है ना, और साथी बन जात है। ई किसान मित्र में जैया सोच को माध्यम है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए किसान खेती से जुड़ी हर जानकारी बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकत है। मौसम की जानकारी मिल जाए तो बुआई, सिंचाई और फसल कटाई की योजना सही ढंग से बना सकत है। बाजार में अगर फसल के भाव अपन के सही जानकारी मिल जाए तो किसान अपनी उपज सही समय पर सही जगह बेच के उचित दाम पा सकत है। तो जितनी जरूरी खेती बाड़ी पूरी मोबाइल और इंटरनेट को सुरक्षित और सही उपयोग जानना भी जरूरी है। तो एक लाने मदद कौन करत है? किसान ई मित्र। तो कोई भी ऑनलाइन योजना या जानकारी पे भरोसा करवे से पहले ओके आधिकारिक स्रोत से पुष्टि जरूर कर लेने चाहिए। अपनी निजी जानकारी, बैंक खाता, पासवर्ड और OTP कोई भी देने हैं। और भैया हरो, ई किसान मित्र केवल एक डिजिटल माध्यम नहीं बल्कि किसान और कृषि विशेषज्ञ के बीच जानकारी को पुल बन सकत है। गांव के पढ़े लिखे युवा भी इनमें बड़ी मदद कर सकत है। वे अपने परिवार और आसपास के किसानन को मोबाइल पर कृषि संबंधी सेवाओं को इस्तेमाल कर वो सिखा सकत है। तो कह सकत है कुल मिला के की बात यह है कि हम सभी मिलके खेती किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ें और अपने किसानन को डिजिटल रूप में मजबूत बनाएं। सही जानकारी, सही समय पर लागू निर्णय, सही फैसलों और आधुनिक तकनीक किसान की सफलता की मजबूत कुंजी बन सकत है। किसान भैया हरो, अपन सभी मिलके सुन रहे हैं अपनो पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। और भैया हरो और

0: की सुनत है।
1: कपास एक खरीफ की नकदी फसल है जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? बीज बुवाई के लिए सही समय क्या होता है? को आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक है। नमस्कार सतीश सर आपको।
2: नमस्कार किसान।

अब हम इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में कपास की। क्या मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन का प्रश्न है? हम 9 जिले में कपास का उत्पादन लेते हैं और सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 6.5 लाख से 7 लाख हेक्टेयर के बीच में कपास का क्षेत्र जो रहता है मध्य प्रदेश में। जहाँ तक 9 जिलों निमाड़ में यदि हम बात करें तो खरगोन सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जहाँ 2.25 लाख हेक्टेयर में कपास।

0: अलग है इनसे, काफी दूर है। और महाराष्ट्र का जो नागपुर 50,000 हेक्टेयर में कपास किसान लगाते हैं।
1: जी सर, बीटी कपास की लोकप्रियता के क्या क्या कारण
0: हाँ,
1: ऐसे हैं?
0: लोकप्रिय

0: 50,000 हेक्टेयर में कपास किसान लगाते हैं।
1: जी सर, बीटी कपास की लोकप्रियता के क्या क्या कारण ऐसे हैं?
0: लोकप्रियता के लिए तीन महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बीटी नहीं था तब

0: ऊंचाई पर जाकर के कम से कम 80 लगा। इसका फायदा क्या मिलता है उसको कि खूंटी पर पक्षी बैठते हैं, और
1: जी
0: यदि कहीं आपके पॉप चल रहा है तो वो झट से इल्लियों को खा जाते हैं, तो आपका प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार से हम प्रकाश प्रपंच की बात करें, इसको लगाएं तो जो रात्रि में संवेदनशील या प्रकाश संवेदनशील कीड़े हैं वो इसमें आकर्षित होंगे। और मैं तो किसानों को ये भी आए दिन कहता हूँ कि पूरी रात प्रकाश का साधन जला करके रखें, केवल सूर्यास्त जब होता है तब जला दें, और 9 बजे या 10 बजे जब उनका सोने का समय है उस समय उसको बंद कर दें। तो कीड़ों के आने का समय भी केवल 3 या 4 घंटे का है, यानी सूर्यास्त लेके 9 या 10 बजे की अवधि में वो इधर उधर विचरण करते हैं, उसके बाद तो वो एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ जाते हैं।
1: जी
0: एक स्प्लैट,
1: जी
0: विशेषकर गुलाबी इल्ली के लिए, एक मटर के दाने के बराबर हम जेल हमने बनाया है, पेस्ट बनाया है ये एक मटर के अंतर पर, और वो भी एक कतार में पहले लेंगे, फिर बगल की कतार में लेंगे, आड़ा तिरछा क्रम में सर्पिल गति जैसे हुए पूरे खेत में ये हम लगाते हैं। 125 ग्राम का एक ट्यूब किया आता है,
1: जी
0: तो ये 1 एकड़ के लिए उपयोगी होता है। और सामान्य रूप से एक बार इसको लगा दिया तो 30 से 45 दिन की अवधि के लिए आपको गुलाबी इल्ली के लिए कोई दवा के उपयोग की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या है, ये भ्रम पैदा करती है नर पंखियों में, भ्रमित होकर के वो जो गंध हमने मटर के दाने के बराबर लगाई उसके आसपास ही पंखी घूमती रहती है, मादा के पास पहुंच नहीं पाती है, यानी हम उनका परिवार जो है वो नियोजित कर ले।
1: सर, क्या जैविक कपास की भी बेहतर
0: हाँ,
1: संभावना
0: और हमारे लिए तो बहुत गर्व का विषय है कि जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है,
1: जी?
0: 10 कपास लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी जैविक कपास नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश में ही सारा जैविक कपास, देश का नहीं विश्व, खरगोन जिला सबसे आगे है, और साधारण तौर पर आपका देवड़ा और दुगना भाव मिलता है। यदि आपका सामान्य कपास 8,000 रुपए के भाव जा रहा है तो ये 15-16 हजार रुपए के हिसाब से जाता है, तो ये फायदा किसानों को है। तो निश्चित रूप से जैविक कपास का भविष्य बहुत उज्ज्वल।
1: सर, प्राकृतिक रंगीन जो जैविक कपास
0: हाँ
1: है उसमें हमारे वैज्ञानिकों का क्या
0: हाँ
1: योगदान है?
0: प्राकृतिक रंगीन कपास का प्रश्न है, वो मध्य प्रदेश की देन है, पूरे
1: जी
0: विश्व को मध्य प्रदेश ने दिया। इसके अलावा हमने गुलाबी, हल्का हला, ये रंग

0: पैमाना हमने निश्चित कर रखा है, इतना प्रकोप होगा तभी हमें दवा डालना है, उस पैमाने पर कीट का प्रकोप आने पर ही कीटनाशक उपयोग करें, अन्यथा हमको कोई उपयोग की जरूरत नहीं।
1: अंत में आप हमारे किसान भाइयों को और क्या जानकारी देना
0: मैं
1: चाहेंगे?
0: अंत में किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण रूप से कि किसान भाई कीट मात्रा में मनमानी ना करें, पहली बात। दूसरी, एक दवा का लगातार उपयोग से बचें। यदि एक दवा का बार बार उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से कीड़ों में कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधकता विकसित होगी और वो कीटनाशक फिर कोई काम की नहीं रहे। और किसान जाता है विक्रेता के पास, आदान विक्रेता के पास, आदान विक्रेता व्यवसायी है, अपना फायदा दिखता है, वो एक के साथ दो तीन, उनने कहा ये फफूंद नाशक भी ले जाओ, ये कीटनाशक भी ले जाओ, ये वृद्धि नियामक भी ले जाओ, तो वो तीन चार तरह की चीजें ले दे देता है। अब क्या होता है, कई बार ये इनमें आपस में मिलनशालिता नहीं और वो विपरीत असर कर देते हैं, फसल प्रभावित होती है, सूखने लगती है, फिर किसान दौड़ता है वैज्ञानिक के पास, अपने महाविद्यालय में या कृषि विज्ञान केंद्र में, फिर वैज्ञानिक कहता है कि भैया आपने क्या किया था, ये गलती की है आपने, इसके आप परिणाम देख रहे हैं। तो इससे बचें, यदि करना जरूरी है तो आजकल तो रेडी मिक्स आ रहे हैं, यानी मिक्सचर जो मिश्रण में चलन में है, तो मिश्रित कीटनाशकों को प्राथमिकता दें, उन्हीं को लें। तो ये अंत में कहना चाहूँगा, धन्यवाद।
1: आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे किसान भाई भी ये जानकारी के माध्यम से अपना बहुत अच्छे से कपास को उत्पादन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खूब इनोनी जानकारी सोई दई डॉक्टर सतीश परसाई ने कि कैसे कपास की खेती में भैया हारे कैसे आमदनी बढ़ ले सकत हैं। और अब हो रहा है किसानवाड़ी में एक मनोरंजन को टाइम, तो भैया हरो अपन और सुनत है मन बहलाओ के लावे माता रानी की भक्ति में डूबी जसुरीली प्रस्तुति बहन गिरजाबाई की आवाज में।

0: किसान भैया हरो,
1: आबे वाली फसलों के लाने भी काम काज के लावे भी अपन के तैयारी बहुत जरूरी होत है कि अगर तैयारी अच्छी रहत है तो कहते हैं कि उत्पादन भी खूब अच्छो मिलत है। तो रबी की फसलों की तैयारी कैसे करें उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रतनदीप सोनी। तो अपन सुनते हैं जा लघु वार्ता।
2: आज हम आपको फसलों की तैयारी के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। सबसे प्रमुख बात है रबी फसलों के लिए, यदि गेहूं के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो पानी खेती भी होती है, अर्धसिंचित भी होती है और सिंचित खेती भी होती है। इसी तरह से रबी फसलों में दलहन, मटर है, मसूर है, इनकी खेती होती है। इसी तरह से आपका तिलहनी फसलों में सरसों है, अलसी है, कुसुम है।

की खेती होती है। कहने का मतलब ये है कि फसलें कोई भी यदि किसान भाई लेते हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तम किस्म का बीज होना चाहिए। उत्तम किस्म मतलब जिसकी आनुवांशिक शुद्धता हो, दूसरी बात है उसका अंकुरण प्रतिशत अच्छा हो, तीसरी बात यह है कि उसमें कोई इनर्ट मैटर माने अपशिष्ट पदार्थ न हो जो उसके साथ मिले हुए हो। इसके लिए बीजों का श्रेणीकरण किया गया है कि प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए, आधार बीज ये किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं जिनकी अंकुरण क्षमता सुनिश्चित होती है और उनकी आनुवांशिक गुण सुनिश्चितकरण संस्था द्वारा प्रमाणित भी होता है, तो इनको बोना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको जो भी फसल हम लगा रहे हैं उनको लगा जो वैज्ञानिक अनुशंसाएं हैं फसलों को लगाने के लिए, बीज दर, कतार से कतार की दूरी, उनका अनुशंसा अनुसार पालन अवश्य करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण जरूरी बात यह है कि फसल हम कोई भी लगाएंगे उसके पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अब पोषक तत्वों की आपूर्ति का प्रयास यदि उस खेत में जिसमें लगा रहे हैं उस खेत की मिट्टी का परीक्षण करके प्रतिवेदन में जो अनुशंसाएं हैं उन अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग होता है तो फसल के उत्पादन में पोषक कारण या अधिकता के कारण उत्पादन प्रभावित नहीं हो पाता है। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी बात यह है कि बीज लगा रहे हैं वह बीज रोग मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसमें रोगों का प्रादुर्भाव और रोगों का की उपस्थिति

दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी बात यह है कि बीज लगा रहे हैं वह बीज रोग मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसमें रोगों का प्रादुर्भाव और रोगों का की उपस्थिति

0: प्रभावित होती है। इसलिए समसामयिक खेत में उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण भी आवश्यक है। उसके लिए यांत्रिक साधन हैं जो मानव चलित भी हैं, इंजन चलित भी हैं, बैलों से भी चलने वाले हैं। तो जितना अपने क्षेत्र है उस हिसाब से व्यवस्था अनुसार अपन कर सकते हैं किसान भाइयों। अब खरपतवारों का नियंत्रण सामान्यतः फसलों में 30 से 35 दिन की अवस्था में पूर्ण होना चाहिए। ऐसा ये करते हैं तो हमारी फसलें बहुत अच्छा उत्पादन दे सकेंगी।
1: और किसान भैया हरों, अब बता दें आपके मंडी के भाव। गेहूं 2400 से 3016 रुपया प्रति क्विंटल भाव में बिकत देखोगा। चना 6500 से 7600 रुपया प्रति क्विंटल के भाव में रहो। उड़द की बात करें तो उड़द 9350 रुपया में बिकत देखो भगव। लेकिन भैया हरों, मंडी के भाव फसल के किस्म, गुणवत्ता और आवक जावक के हिसाब से घटत बढ़त रहे थे। तो भैया हरों, अपनी मंडी के पास के भाव देख सकत है, पास की मंडी के भाव आप और देख सकते हैं। तो भैया हरो, अब देखो घड़ी की जो टिक टिक है, बा कह रही है कि रानी बिन्ना अब हो जाओ तुम तनक चिमाही बिरिया की टाइम। तो भैया हरो, अब देव हमें अनुमति। बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की किसान बाड़ी कार्यक्रम में जो आपने जानकारी हासिल करी वह आप लोगों के लाने भी है। तो भैया हरो, आप सबकी मंगल कामना के संगे अपनी रानी बहन के दें अनुमति और स्वीकार करें रानी बहन की। राम राम, जय सीताराम।
2: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे लहलाएगा? पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। और लोग पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
5: एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आंगनवाड़ी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय है हर घर बेहतर जीवन।
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वीं चर्चा हर घर बेहतर जीवन, इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
4: नमस्कार, और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में, और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली

0: आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
1: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको उसके लिए लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड भी 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा दैट यू हैव लॉन्च्ड,
0: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
1: जी
0: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
2: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है ये पॉलिसी के ऊपर उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव कर, बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। इसको 5-3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे तो फैसला हो गया कि

0: इमोशनल चेंज लाया उसमें, उसमें चेंज लाया जिसमें बोला कि साहब ये आवाज जो है ये, हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है. तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है. आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है. इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया. और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में. अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है. उनके ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था. अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं. कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने कल पे ज्यादा बात करेंगे. जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे. अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया. अब कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, जगह नहीं है दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
1: जी.
0: तो ऐसा नहीं घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है. वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको साहब अच्छा हमें घर मिला. अब जब घर देंगे अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे आगे बिजली की बात करें, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है. हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
0: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क थी. अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है. ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक अच्छी बात है. तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है. जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं. आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है. एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए. तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना. पहले आता है कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये. और हम इतना बड़ा बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को तो अधूरी बात है. तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया. उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है आप उसके बारे में सोचिए. तो जो घर में जो बदलाव आया है ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी.
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो साफ पानी है और एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट है और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है. मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते. दस्त नहीं उनकी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड, तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए. यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में,

0: अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है. और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास हैं कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी. और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ही अच्छा करना चाहूंगा.
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे. दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम का सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है. तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए. और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से रखता था. और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था. तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
2: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना. ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें में पढ़ी, बाद में हमने पत्रकार अलग अलग इलाकों में देखा. राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे. वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती. पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था. वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी निहार का. ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था. इकोनॉमिक्स में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी.

0: स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था उस टाइम पे 1000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ चाहिए
1: जी,
0: रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से जिंदगी और है, कल बदल गया। ये स्पीड है, तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसका स्केल देखिए। स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 30% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था और आज हमें 79% 80%, 17 से 80 की जर्नी ऑप्शन पूरा हो जाएगा। तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउस होल्ड में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की। ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स है पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, प्रभाव ज्यादा पड़ता है। 4 लाख डेथ्स जो हैं वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण से आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गांव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई और सबसे बड़ी बात, इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन भी होती है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी,
0: ठीक है। आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म होगा, पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समिति, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है, तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाए, राज्यों ने भी दिखाए, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना, तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है योजना सौभाग्य योजना की, क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात किया में, राइट
1: जी,
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और

0: लिए, आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको। कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आप अपने आप नहीं आया है। सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने के, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
1: बिल्कुल
0: राइट। कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा। सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल,
0: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो एश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन के रिस्पॉन्स में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन। बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है। पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी,
0: आधा घंटा, आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जिस बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है, रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, आप पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा। महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है, मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं। फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके, देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जन
0: जनता की कैटेगरी में
1: जी। है,
0: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है, और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में, और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
2: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है।

0: ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
0: इतने लोग। और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है, तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
1: जी।
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना। तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को
1: जी।
0: तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों के, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल है उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
2: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसे ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफ़ी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से,
0: इन स्कीमों से। ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है, 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है, और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है, वो इन सुविधाओं का

0: फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए या पिछली बार आपने देखा, मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध है। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो, एक्सेस बढ़ना एक फ़र्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम करे, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व यह है
1: जी।
2: और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
1: जी।
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, विषय था हर घर बेहतर जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुनिए साथ ही फिल्म का गीत मुकेश सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुर ने इस गीत को लिखा है और नौशाद का संगीत है।

श्रोताओं सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया मेला फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना है और आरडी बर्मन का संगीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
3: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
2: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
4: डीप फेक कितनी

0: बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
3: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का

0: लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में दो दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
1: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
2: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
3: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रूपए पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नी पल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers.

आई श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म स्वीकार किया मैंने से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर हैं, निदा फाजली के शब्द हैं और उषा खन्ना का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है एक नज़र। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके मित्र मयंक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और लेते हैं आज का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। किशोर कुमार की आवाज़ है, आरडी बर्मन का संगीत है और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या और प्रियंका, जरूर रोड से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे, इंदौर के हमारे श्रोता हैं दिनेश हार्डिया, ज्योति, राहुल, दीपिका, सुहानी, अंजू, रानी, अवधि, दिव्यराज और इनके परिवार के सदस्य, फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह और गुरनूर सिंह, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली, दादीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण,

अपील कुणाल और समस्त मेहरा परिवार। अगले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। अमरावती महाराष्ट्र के श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीब बेगम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्ताबा, रऊफ, शाहिद और इनके परिवार के सदस्य। साथ ही हैं अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। वाशी महाराष्ट्र से अशोक चुमले, दिनेश चुमले, रुपेश, लीलाबाई, चेताली और प्रीति चांदेड़। अगले हमारे श्रोता हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा और इनके परिवार के सदस्य। तो श्रोताओं, इन सभी की फरमाइश पर हम सुनते हैं कटी पतंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन भावन कार्यक्रम में श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत। स्वर लता मंगेशकर का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और उस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता सोमानी नगर इंदौर से बी आर राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, टोनी, निधि और इनके परिवार के सदस्य, सनावत मध्य प्रदेश से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम, हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा कंचन और भावना। राजपुर बड़वानी के श्रोता हैं संतोष यादव, शिवराम यादव, दुर्गा, निखिल, अंकित, नंदनी, किरण, सोनू, रेखा, गीसु दिलवारे और संतोष पाटिल। अगला पत्र में मिला है पंजाब से, लिखने वाले हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक। गांव फ्रांसी से राजकुमार हुड्डी, सरजीत सिंह हुड्डी, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से ही राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष और बब्बू डब्बू। वाशी महाराष्ट्र से हमें लिखा है विठल सुरोशे, सुषमा, परिधि, निधीश, मायरा। डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, अधीश यादव, स्मित और श्रियांश गोरे। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी चंचल, अर्जुन और धीरज। उमरखेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका, लक्ष्मी, स्वरित और उत्तम जमदाड़े। गुमाश्तनगर इंदौर के हमारे श्रोता है अनिल कवचाले, साबिया, फजल, सुषमा, पूजा नैनामा, सीमा, मीनू जोशी और इनके परिवार के सदस्य। सनावत मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। बैतूल मध्य प्रदेश से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निमाड़कर और संदीप पाटिल। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का, लता मंगेशकर का गाया मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत।

रफू चक्कर। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। शब्द गुलशन बावरा के हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइश हमें मिली है इन श्रोताओं की, नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, लाबरा भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। अगले हमारे श्रोता हैं लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक, सुशील, बीके पुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन कपूर, गुंजन, लालसा कपूर, रामा, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसीपुरी और अरुणपुरी। अगले हमारे श्रोता हैं सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज शमीम, बच्चू शेख, रुबीना बेगम इशरत, नदीम अकरम, अमन, पूनम कुमारी शर्मा, ममता रानी शर्मा। महसूल्स के हमारे श्रोता हैं हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, आबिया, अरहान, हमजा और मुजम्मिल बाबू। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। अगले अनुरोध करता है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद। अगले हमारे श्रोता किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना, रिजवान, इमरान आलम, शबाना आलम और चांदनी नाज। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद का रफू चक्कर फिल्म का गीत, जिसे गाया है कंचन और शैलेंद्र सिंह ने।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम मन भावन का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया अनोखी अदा फिल्म का गीत। शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता पांठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, बल्हार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्य, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम और रुखसार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगले हमारे श्रोता हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से मुशरफ का तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर और भैया तड़वी, बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशमूणत और इनके परिवार के सदस्य। अगले हमारे श्रोता हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र के नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। तो आइए सुनते हैं अनोखी अदा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन भवन कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म शंकर हुसैन से। स्वर है लता मंगेशकर का, जान निसार अख्तर ने इस गीत की रचना की है और संगीत दिया है खयाम ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी। साथ ही अगले श्रोता हैं सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशा। अगले हमारे श्रोता है संगम रेडियो श्रोता संघ धनोरा विटाली महाराष्ट्र के भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, प्रेम, श्रेया और श्रुति। जलगांव जामोद से उषा काटे और संतोष काटे। अगले हमारे श्रोता है मंडी गोलवाला राजस्थान से ब्रजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मिंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइमा शर्मा। ग्रामखेड़ा मंसूर मध्य प्रदेश से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान। बड़बुंजी जिला आगर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं रघुनाथ मालवीय, मंजू, बबीता, राधा, ओम प्रकाश और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का लता मंगेशकर का गाया शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया मशाल फिल्म का गीत। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। श्री रुकड़ेश्वर श्रोता संघ छत्रपति शाहू नगर हिंगोली के हमारे श्रोता हैं रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई मयूरी, सुरभि मंजूषा और इनके परिवार के सदस्य, अशोकनगर बसमत हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती, सखाराम ठोके, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू और इनके परिवार के सदस्य। अगले हमारे श्रोता हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। अंबेडकर चौक वाकुड़ी से उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े, स्वरित पोपलवाड़, संघर्षा, संविधान धोंगड़े। हिंगोली के ही हमारे श्रोता हैं शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, सुधाकर कामले, संदीप कामले और इनके परिवार के सदस्य। अगले हमारे श्रोता हैं बहरामपुर टेमा से तिलुकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित वर्मा, सचिन, समर, राज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। अगले श्रोता करनाल से हैं, नाम है सुधीर नूतन और मीनाक्षी तिवारी। सोनाला जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र के श्रोता सैयद आरिफ, जुनेद बेग, गोविंद भकेरिया और मुइन अली। सनावत मध्य प्रदेश से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुषी और प्रणव सावले। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का किशोर कुमार का गाया मशाल फिल्म का ये गीत।

मन भवन कार्यक्रम में श्रोताओं, लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं अर्पण फिल्म का गीत, जिसे गाया है लक्ष्मी, क्षमा कीजिए, लता मंगेशकर ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के शब्द हैं और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, पालदानगा इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, बागपत से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल, प्रमिलागंज अलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, डूंगरगांव छत्तीसगढ़ से हमें लिखा है राष्ट्रपाल गजभिये ने, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये और इनके परिवार के सदस्य, देवपेठ वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राश्री, राजू भावसार और प्रीति। अगले हमारे श्रोता हैं सर्वानिया महाराज जिला नीमच मध्य प्रदेश से, गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन, यशस्वी, हंसवी पाटीदार और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया अर्पण फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी श्रुति साडोलीकर का गाया राग नंद। तबला संगत यूसुफ खां की थी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार होंगे, जिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान

0: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माना सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी

42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन के केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह

शुभारंभ किया। ये भारत में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम